मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को

अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

वंदन, अभिनंदन हमारी भावनाओं का वो स्वरूप है जो भावों की उच्चता और समर्पण को अभिव्यक्त करता है। ये समर्पण जब अपनी मातृभूमि के लिए हो, अपने राष्ट्र के लिए हो, तो वो संकल्प और शक्ति बन जाता है।

अपना सब समेट एक आस्था, एक विश्वास के प्रति केंद्रित होना भी भक्ति की ही एक अवस्था है, जो चेतना और भावों को एकाकार करती है।

भोला विश्वास भी भक्ति का ही पर्याय है, जैसे निस्वार्थ प्रेम, जैसे ज्ञान की धार, जैसे फल की चाह बिना किया गया कर्म या कर्तव्य की निरंतरता।

इस दृश्य जगत में हम उस निराकार परमेश्वर को भी भांति भांति के आकार और मनमोहक छवि में गढ़ते हैं। ध्येय मात्र उस परमात्मा से जुड़ने या जुड़ पाने का है। वहीं दूसरी ओर भाव, विचार और सद्गुण में उस निर्गुण को पाते हैं और कभी उस असीम अनंत को खोजते हैं अपनी ही सीमा और संकेतों में।

जीवन का सार सबका अपना है, उद्देश्य सबके स्वतः निर्धारित, जीवन का कारण कोई नहीं जानता। इस यात्रा में अपनी चाही समझी और भली सी लगने वाली राह पर चल रहे हैं उस बिंदु तक जो अनंत में विलीन है।

आज की वंदना में आपने लता मंगेशकर, हरिहरन, हरिओम शरण, नीना मेहता और राजेंद्र मेहता के स्वर में भक्ति गीत सुने। देशगान समूह स्वर में था।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस खान मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अखिल ब्रह्मांड में जड़ चेतन प्रकृति का एक एक अवयव अन्योन्याश्रित है, पारस्परिक संबद्ध है। झरना पहाड़ से जुड़ा है, नदी झरने से, ताल नदी के जल से तो नदी सागर से। समंदर का जल वाष्प बनकर बादल बन जाता है, यही वर्षा बन वर्ष का हर्ष बन जाती है। फिर फसल लहलहाती है, फसल क्या है? कवि नागार्जुन के शब्दों में ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की गरिमा, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सारे अस्तित्व परस्पर संबंधित हैं, सब एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। स्थापित संतुलन ही प्रकृति का नियंता है। इसी तरह हम इंसान

0: इंसान, रिश्ते, नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का पहला संबंध अपनी मां से होता है, फिर पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी जीवन से जुड़ते चले जाते हैं। मां का रिश्ता भावनाओं से भरा होता है। मां अपने बच्चे की परवरिश में अपना सब कुछ लुटाती चली जाती है। बच्चे को खिलाना, पिलाना, नहलाना मनोयोग से करती है। वात्सल्य भाव से लबालब होने के कारण ये रिश्ता निभ जाता है। निदा फाजली एक स्थान पर लिखते हैं, मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। भाई बहन का रिश्ता एक दूसरे के व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं। भाई को लगता है कि एक हजारों में उसकी बहना है, वहीं बहन अपने भाई की सलामती की दुआ हरदम करती है। पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी परस्पर सहयोग से चलाते हैं। दोनों के बीच अगाध विश्वास का रिश्ता है। दादा दादी, नाना नानी से रिश्ता जड़ों को मजबूती देता है। कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न मित्र दुख हूं ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। कृष्ण और सुदामा के बीच मित्रता अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। रिश्तों के संजाल का हर धागा मजबूत और समृद्ध तभी बन सकता है जब उसे सकारात्मकता और जिम्मेदारी से निभाया जाए। वर्तमान में परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के लुप्त होने व अहम या स्व की प्रवृत्ति के कारण निर्वहन कठिन हो गया है। कवि धूमिल कहते हैं, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना लोहा नहीं पाते कि हम उनसे ताली बनवाते और भाषा के भुंसाली ताले को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। निर्वहन हो इसके लिए जरूरी है आस्था और विश्वास। संबंधों में भरोसा कायम हो, नजरिया सकारात्मक हो, सोच विचार और व्यवहार में लचीलापन हो, तो सामंजस्य बिठाने में मदद मिलती है। हर रिश्ते में एक सीमा बनाए रखना भी जरूरी है। अपनी सोच विचार और पसंद को दूसरे पर न थोपें। यहां पर पतंग की डोर सा रिश्ता हो, जैसे ढील देने पर पतंग काफी ऊंचाई पर पहुंचती नजर आती है, लेकिन तेज बहाव में थोड़ा ज्यादा खींचते ही कट जाती है। उसी तरह रिश्ते अपनी बात थोपने, मर्जी चलाने के बजाय थोड़ी ढील दें तो मजबूती के साथ निभ सकते हैं। सांसारिक रिश्ते व संबंधों का निर्वहन करते हुए हमें परमात्मा से भी संबंध जोड़ लेना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब हमारे प्रत्येक कर्म में सच्चाई, विश्वास, ईमानदारी, कर्तव्य बोध, भरोसा और समझ होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: चिंतन,
1: विशेषता निर्वहन। आलेख डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव, कथा और वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा।
3: नमस्कार किसान भाइयों, कृषि चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और लगातार कुछ किसान भाई इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और नैनो यूरिया के बारे में हम बात करने से पहले हम इसके समझते हैं कि ये नैनो यूरिया क्या है। देखिए, नैनो यूरिया एक नैनो तकनीक पर आधारित एक विशिष्ट प्रकार का उर्वरक है और ये विश्व का पहला ऐसा उर्वरक है जिसे पेटेंट मिला हुआ है। ये जो है ना, विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक के द्वारा बनाया गया है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि आपको पता है कि ये दाने वाला यूरिया होता है, उसके विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और दाने वाले यूरिया से नत्रजन मिलता है और नत्रजन हर किसी फसल के लिए उपयोगी है, क्योंकि नाइट्रोजन तत्व की वजह से फसल की बढ़वार, वृद्धि, विकास होता है। और जब किसान भाइयों को अपनी फसल में कोई पीला रंग या इस तरह की फसल कमजोर दिखाई देती है

0: तो उनके संज्ञान में सिर्फ एक ही बात आती है कि इसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी है, और नाइट्रोजन तत्व की कमी पूर्ति करने के लिए खड़ी फसल में वो सिर्फ यूरिया का उपयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से जो हमारा फसलों में जो यूरिया उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन देने के लिए, वो करीब करीब 82% नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। तो इतनी मात्रा में जब यूरिया उपयोग किया जाता है, और आपको जैसे पता है कि यूरिया जब फसल में देते हैं तो यूरिया की 30 से लेकर 40% मात्रा ही फसल उपयोग कर पाती है, बाकी जो यूरिया होता है वो जड़ क्षेत्र से पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाता है, या जो ज़मीन पर रह जाता है वो हमारी हवा में गैस बन के चला जाता है। और हमारी गैस में जैसे आपने पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे पर्यावरण के लिए है। तो ये गैसें हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो एक स्थिति निर्मित होती है, इन्हीं गैसों के माध्यम से होती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। और इसके लगातार उपयोग करने से हमारी ज़मीन में इसकी बहुत मात्रा ज़मीन में एकत्रित होती जा रही है, और इन सब कमियों के बचने के लिए ये प्रयास किया गया कि हम ऐसा कोई इसका विकल्प लेके आए हैं जिससे नाइट्रोजन तो प्राप्त हो ही जाए, साथ साथ हमारे जो पर्यावरण है हमारी ज़मीन में उसको भी हम बचा सकें। और ये नैनो यूरिया चूँकि तरल रूप में है, आपने देखा होगा ये जो एक 500 ml की बोतल आती है, और ये बोतल हमारे जो 45 किलोग्राम का जो बोरा होता है, जो दाने वाले यूरिया होता है जिसको हम परंपरागत यूरिया कहते हैं, उसकी बराबर नत्रयन देने का ये प्रभाव रखता है। और आपने देखा होगा कि जब हम दाने वाले यूरिया उपयोग करते हैं तो जो हमारी फसलें हैं उसमें जब हम देते हैं तो फसलें बहुत तेज़ी से उसको लेती हैं, और फसल में कुछ समय के लिए बढ़वार बहुत तेज़ी से दिखती है, उसका हरा रंग भी बहुत तेज़ी से दिखता है। तो किसान भाइयों को ये लगता है कि ये हमारा जो दाने वाले यूरिया है इसकी वजह से हमारी फसल में जो हमारी उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह से फसल में बीमारियाँ भी ज़्यादा प्रकोप होता है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। दाने वाले यूरिया जब अत्यधिक मात्रा में देते हैं तो फसल में एक जो फसल की मुलायमता होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब ज़मीन से नाइट्रोजन घुलकर पौधे के अंदर आता है तो बहुत सारा पानी के साथ घुल करके ही आता है, तो पानी की मात्रा भी पौधे के अंदर बढ़ जाती है। वहीं जब हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं, चूँकि इसको हम पत्ती के माध्यम से देते हैं, तो पौधे पौधे के सिस्टम में ये पत्ती के जो हमारे स्टोमेटा होते हैं या और दूसरे तरह के रंध्र जो पौधे की पत्तियों के अंदर होते हैं वो उनके माध्यम से पौधे के अंदर चला जाता है, और पौधे के अंदर जाने के बाद ये पौधे के जो वैक्यूल्स होते हैं, कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, खाली जगह होती है, वहाँ ये एकत्रित हो जाता है, और वहाँ से फिर बाद में पौधे को जब भी नाइट्रोजन तत्व की पौधे के अंदर कमी आती है, बाद में फिर ये जो है पौधे को वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं पौधे को उसकी आवश्यकता अनुसार ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। और इसके फायदे की हम बात करें तो देखिए, इसको लाना ले जाना आसान है, इसमें आराम से एक बोतल आप थैले में रख के भी ला सकते हैं। दूसरा, इसको किसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि पानी की कमी हो जाती है हमारी ज़मीन में तो दाने वाले यूरिया का उपयोग हम नहीं कर पाते, तो उस अवस्था में भी हम ये नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, और ये सस्ता भी है, किफ़ायती है, पर्यावरण हितैषी है, तो बहुत सारे फायदे हैं और आज के समय की ज़रूरत भी है। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी से नैनो यूरिया विषय पर कृषि चर्चा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: பழமை கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर. सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर.
2: मीडियम वेव डीटीएच के आउटरीच चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण. 6:55 होने को हैं. थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं. कृपया प्रतीक्षा करें.
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्. शिक्षा मंत्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्. संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति. एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थया आयोजिता आसीत्. नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरणविषये वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति. सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जाँच कराने को कहा गया है। पुलिस ने

0: सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल सदी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में विवरण। आज आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आप सुनेंगे मीजल्स यानी खसरे से बचाव और जागरूकता पर जयप्रकाश अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश अहरवार से चर्चा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मेंटल हेल्थ, डायबिटीज और बीपी को शामिल किया गया है। इसकी आवश्यकता और महत्व पर एनएचएम के संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे गर्मी में टायर का प्रेशर और कार में ना रखने वाली वस्तुओं पर एक्सपर्ट आदर्श खरे से बातचीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के मुख्य आकर्षण। और 8

0: कर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रेम शंकर शर्मा के गाए भजन आप सुन सकते हैं 9:15 पर। प्रदेश की सुर्खियां, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10 बजे का समय है जिले की चिट्ठी का। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला संसार। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग वसंत मुखारी। 11 बजे का समय है फोन इन कार्यक्रम फोन करें की सुने का। 12 बजे आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति हैं। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2:00 PM, शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। आपकी फरमाइश दिन में 12 बजे और दोपहर 2:30 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6 बजे, कार्यक्रम सुर्खियों में 8 बजे। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। पर चर्चा का विषय होगा और 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, लेखक हैं वसीम खान और प्रस्तुतकर्ता राकेश टोंडियाल। 10:30 पर रात में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग रागेश्वरी। 1 बार फिर याद दिला दें आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 12 बजे और दोपहर 2:30 पर। और महिला कार्यक्रम होगा 1 बजे, लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति हैं। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल साथी वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज 12 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफी

0: जिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है, साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।
1: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
2: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है। उससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का ये अभियान चल रहा है।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय

0: क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रुपये की राशि सीधे DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता KGP-12 के 4 शावक कल सुबह एक मांद के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे, वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक कहार स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसकी तलाश हर इंसान को है और वो है खुशी। लेकिन सवाल यह है कि क्या खुशी कोई मंजिल है या एक आदत? हम अक्सर सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच ये है जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तब बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो आइए जानते हैं खुश रहने की आदत कैसे डाली जाए। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। एक कप चाय, किसी अपने का फोन या बस सुबह की ठंडी हवा, इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए। यही असली खुशी है। खुद को समय दें। जब हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, दिन का थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालिए। चाहे म्यूजिक सुनना हो, वॉक पर जाना हो या फिर 2 मिनट शांति से बैठना। तुलना को छोड़ दीजिए। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकना खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, हर किसी की कहानी अलग है। और सबसे ज़रूरी, शुक्रिया कहना सीखिए। जो हमारे पास है उसे अप्रिशिएट करना शुरू करें। हर दिन 2-3 चीज़ों के लिए थैंक यू कहिए। मन अपने आप हल्का लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन खुश रहने की कोशिश करूँगा या करूँगी। वैसे भी श्रोताओं, खुशी बाहर नहीं मिलती, यह आपके अंदर बसी हुई है। बस उसे महसूस करना हमें सीखना होगा।

विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से। नीट परीक्षा रद्द, दोबारा होगी परीक्षा, सेंटर नहीं बदलेगा, ना लगेगी फीस, पुरानी फीस होगी वापस और वहीं सीबीआई इसकी जांच करेगी। पेपर लीक के खुलासे के बाद मंगलवार को नीट परीक्षा रद्द होने से डॉक्टर बनने के इच्छुक करीब 23 लाख विद्यार्थियों के सपने और मेहनत को गहरी चोट लगी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने माना है कि 3 मई को हुई नेट परीक्षा से पहले ही गैस पेपर के नाम पर बहुत सारे प्रश्न आउट हो गए थे, इसलिए परीक्षा दोबारा होगी। इसके कार्यक्रम की घोषणा आगामी 7 से 10 दिनों में की जाएगी। और वहीं सीएम के कारकेड में अब 8 वाहन होंगे और वहीं रैलियां नहीं होंगी। पीएम मोदी के आह्वान के बाद अब राज्य सरकार ने ईंधन के संतुलन उपयोग को लेकर ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर अपने कारकेड से वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। सीएम ने कहा कि आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों से यात्रा के समय को कम से कम वाहनों के उपयोग की अपील की है। इसके अलावा नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों से भी सादगी के साथ पदभार ग्रहण करने की बात कही। और वहीं सतना ग्वालियर में खसरा संक्रमण 40 पॉजिटिव मिले। प्रदेश के 2 जिले सतना और ग्वालियर में मीजल्स यानी खसरा के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की लिए एक चेतावनी खड़ी कर दी है। सतना में बीते 120 दिनों में लगभग हर चौथे दिन एक नया मामला सामने आ रहा है। अब तक यहां 34 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी इलाकों में भी संक्रमित मामले सामने आए हैं। और वहीं बात अब मौसम की। प्रदेश में सीजन में भीषण गर्मी का दूसरा दौर मंगलवार से शुरू हो गया है। भोपाल में 24 घंटे के भीतर दिन का तापमान 1.4 डिग्री से बढ़कर 42.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री तक अधिक है। मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश में भीषण गर्मी रहेगी। भोपाल सहित प्रदेश के लगभग 70% हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना है। मंदसौर नीमच को छोड़ पूरे मालवा निमाण क्षेत्र में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी समाचार पत्रों से सुर्खियां आप सभी के लिए। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म वीर ज़ारा से।

0: श्रोताओं, ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में बहुत कुछ होगा खास, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऐसी कौन सी बीमारियों को ऐड किया गया है जो बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है, और साथ ही गर्मियों में हम गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना रखें, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें गाड़ी के अंदर नहीं रखना चाहिए इस तेज़ गर्मी में, और वहीं सबसे ज़रूरी बात होगी मीजल्स यानी खसरे से बचाव और जागरूकता से जुड़ी हुई। तो श्रोताओं, मीजल्स यानी खसरे के कई सारे जो संक्रमित मरीज़ हैं वो लोग मिल रहे हैं, पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की है जयप्रकाश हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश अहिरवार से, जो हमें बताएंगे कि खसरे से बचाव के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं और इसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: नमस्कार भोपाल के श्रोताओं को नमस्कार। मीजल्स या जिसे खसरा भी कहते हैं और इसको माता के नाम से जो बीमारी जानी जाती है, ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। मतलब इसका ये हुआ कि यदि किसी एक व्यक्ति को मीजल्स या खसरा हुआ है, उसके आसपास में जितने भी व्यक्ति हैं और यदि उनको टीका नहीं लगा हुआ है या वो व्यक्तियों को के शरीर में ताकत नहीं है इस बीमारी से लड़ने की, एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, तो उन्हें यह बीमारी होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बीमारी होती है तेज़ बुखार के साथ में, लगभग 4 दिन तक तेज़ बुखार आता है और 4थे दिन से दाने शरीर पर दिखने लगते हैं, जिनको माता बोलते हैं या खसरा के दाने बोलते हैं, जो लाल रंग के होते हैं और बिना पानी वाले होते हैं। इसके साथ साथ खांसी और आँखें आ जाना या आँखें लाल हो जाना, ये लक्षण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो खसरा के बारे में है, माता के बारे में है, वो ये बात है कि इसका बचाव टीका लगा के किया जा सकता है। अच्छा। टीका सरकार लगाती है 9 महीने पर और दूसरा टीका 18 महीने पर सरकार की तरफ से निःशुल्क लगाया जाता है। मीजल्स और रुबेला ऐसे 2 टीकों का एक मिला के एक टीका बनाया हुआ है सरकार ने, वो लगता है और उसको लगाने के बाद में एक टीका लगाने से 95% बच्चों को सुरक्षा मिल जाती है।
0: अच्छा।
1: दूसरा टीका 18 महीने पर लगता है, यदि किसी कारणवश से लेट हो जाते हैं थोड़ा तो 5 साल तक भी यह टीका लगाया जाता है। अभी के सीज़न में जो हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कस्बों में, गाँव में देखने को मिल रहे हैं, तो सामान्य तौर पर ये मौसम ऐसा है जबकि वायरस की बढ़ोतरी होती है, वायरस फैलता है, तो इस तरह के केसेस देखने मिलते हैं। ये सितंबर से लेकर के जून तक का जो समय होता है, इस समय पे ये वायरस के बढ़ने का हमेशा अंदेशा रहता है। तो मेरी पहली इसमें जो दरख्वास्त है कि जिन बच्चों को भी 9 महीने या 18 महीने का टीका नहीं लगा है, उन्हें तत्काल टीका लगवा लिया जाए। ये बचाव का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे सुलभ साधन है। वो बच्चे जो अभी जिनको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तेज बुखार के साथ दाने, खांसी और आंखें लाल, उन बच्चों को तुरंत

0: अस्पताल में जाना चाहिए, अपना परीक्षण कराना चाहिए।
1: जी
0: और सबसे ज़रूरी होता है उनमें उनकी आँखों की रोशनी को बचाना, तो उन्हें 2 डोज विटामिन ए के देना चाहिए लगातार, 2 दिन उनको दो दो खुराक विटामिन ई की, ताकि आँखों की रोशनी बचाई जा सके। और इसके बाद अलग, और अगर और कोई उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और कोई दुष्परिणाम दिखते हैं, तो चिकित्सक परीक्षण के बाद उनका उपचार कर सकते हैं। जो बच्चे जिनको अभी मीजल्स नहीं है, जिनको खतरा नहीं है, पर वो ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर किसी बच्चे को मीजल्स या रुबेला के लक्षण देखने को मिले हैं,
1: जी
0: उन्हें भी अपना परीक्षण करा लेना चाहिए।
1: अच्छा, कई बार अंधविश्वास के चलते लोग घर में ही उपचार करने को प्राथमिकता देते हैं और कई बार वो चिकित्सालय का रुख नहीं करते हैं। तो ये ऐसे में बच्चों के लिए या जिस किसी को भी खसरा हो रहा है उसके लिए कितने गंभीर ये बीमारी हो सकती है?
0: मैं बहुत इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि खसरा यदि किसी बच्चे को या बड़े को, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम 7 दिन से लेकर के अगले 7 साल तक शरीर में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आँखों में अंधापन आ जाना, आँखों की पुतली खराब हो जाना, कान बहना, कान का पर्दा फट जाना और उसमें मवाद आ जाना, टॉन्सिल्स बढ़ जाना या गले में इन्फेक्शन का रह जाना, और बहुत समय तक फिर खांसी आते रहना, बच्चे को निमोनिया हो जाना, और नीचे जाते हैं तो बच्चे की आंतों में इन्फेक्शन बैठ जाना और उसके कारण से फिर लगातार डायरिया होते रहना, दस्त रोग होते रहना, और अंततः वो कुपोषित होना। फिर कुपोषित हो जाने के बाद में ऐसे कमज़ोर बच्चे को टीबी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा जब कुपोषित हो जाता है तो फिर बाकी की बीमारियां घेर लेती हैं और दिक्कत बढ़ती है। 6-7 साल तक होने तक बच्चे के शरीर में ये वायरस जो है दिमाग तक पहुंचने की संभावना होती है, और जिसको SSPE बोलते हैं, सब स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस, मतलब झटके आने वाली बीमारी जिसमें दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो वहाँ तक ये वायरस पहुँचता है। हर एक बच्चे को जिसको मीजल्स हुआ है, उसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ दुष्परिणाम ऐसे लंबे समय में देखने को मिलते हैं। तो मेरी विनम्र अपील है सभी से कि घर में रह करके किसी दुष्परिणाम का इंतजार ना करें।
1: बहुत आप मिजल्स के इस बढ़ते संक्रमण को और लोगों में जागरूकता के लिए, टीकाकरण की जागरूकता को लेकर यदि आप उन तक कोई ज़रूरी बात पहुंचाना चाहें तो सर वो क्या होगी?
0: इससे बचाव के लिए टीका ही एकमात्र सबसे अच्छा रास्ता है, तो टीकाकरण को हमें अपनाना चाहिए। और जितने भी 12 तरह के टीके सरकार लगाती है, उसके अलावा भी टीके हैं जो अन्य बीमारियों के हैं जो सरकार नहीं लगाती पर मार्केट में मिलते हैं, तो टीकाकरण को बच्चों की जिंदगी को बचाने वाला औजार हमको समझना चाहिए और उन्हें टीकाकरण का फायदा देना चाहिए।
1: बिल्कुल, हमें यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास कुछ इस तरीके की संक्रमण वाली चीज़ें होती तो तुरंत हमें एक्शन लेते हुए उस पर अमल करना चाहिए, और ख़ास तौर से जो टीके बचाए बताए जाते हैं बच्चों को लेकर, वो हमको ज़रूर लगवाने चाहिए। खसरा यानी मीज़ल से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे थे हमसे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश अहिरवार।

0: ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, ख़ास तौर से गर्मियों में हमें अपनी गाड़ी का खास ख्याल रखना पड़ता है और उसमें भी टायर का, क्योंकि उसमें हमें प्रेशर का ध्यान रखना होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर है टायरों के अंदर तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और कम होता है तो क्या नुकसानदायक हो सकता है, और ऐसी कौन सी वस्तुएँ होती हैं या चीज़ें होती हैं जो हमें गर्मी के दौरान कार के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसके बारे में हमने और बातचीत की है एक्सपर्ट इंजीनियर आदर्श खरे से।
1: मैं टायर के रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गर्मियों के समय में, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले अपन गर्मी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करिए हवा की जगह। नाइट्रोजन ठंडी हवा रहती है जिसके कारण वो एक्सपांड नहीं करती है और आपका जो टायर का प्रेशर है वो मेंटेन रह जाता है। अगर आप उसकी जगह एयर यूज़ करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स हीटअप होने पे जब रोड पे चल रहे होते हैं तो वो वाइब्रेशन के कारण एक्सपांड करते हैं, जिससे कि अगर आपने 35 पॉइंट हवा भराई है या 32 पॉइंट हवा PSI हवा भरवाई है तो वो एक्सपांड करके 40-45 चले जाते हैं, जिससे गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और टायर की लाइफ भी 25% तक आपकी गिर जाती है
0: जी। और क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनको गाड़ी में कितनी हवा रखनी चाहिए और कितनी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: दो तीन चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। सबसे पहले कंपनी आप लोग गाड़ी में एक स्टिकर लगा के देती है जिसमें लिखा रहता है कि आपको टायर प्रेशर इन बिटवीन इतना रखना है लेडेड और 5 लेडेड में, अनलेडेड में। मतलब फॉर एग्जांपल आपके 3 पैसेंजर बैठे हैं तो 3 पैसेंजर के अकॉर्डिंगली आपको कितनी हवा रखनी है।
0: अच्छा।
1: और फुल लोडेड गाड़ी रखी हुई है तो उस फुल लोडेड में आपको कितने प्रेशर रखना है वो आपको पूरा मेंशन रहेगा। आप उस प्रेशर पर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का एफिशिएंसी भी आपको अच्छा मिलेगा और टायर की लाइफ भी आपकी इंक्रीज करेगी। जब भी गर्मी का मौसम आए तो आप नियर बाय जो भी आपके टायर स्टोर हैं वहाँ जाके आप टायर को चेक करवाइए कि आपके टायर की रबर तो नहीं ख़राब हो गई है, वो क्रैकनेस तो नहीं आ गई है, या तो उसकी डेप्थ कम तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं उसमें कीलें ना लगी हों, कहीं से कट ना लगा हो, तो वो आप सबसे पहले चेक करवाइए। अगर ऐसा है तो आप उसको चेंज करवाइए।
0: गर्मियों के मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि गाड़ी के अंदर हम जब भी पार करते हैं तो अंदर का जो तापमान होता है वो बाहर के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गर्मी के मौसम में हम गाड़ी पार करते समय या गाड़ी चलाते वक्त ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को कार के अंदर नहीं रखना है जिससे दुर्घटना के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इनके ऊपर यदि हम नज़र डालें तो वो क्या?
1: बहुत सही सवाल किया आपने विवेक जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार के अंदर धूप में खड़ी हुई गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों रहता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर है टेम्परेचर आप खड़े हो। जो आपकी रेज आती हैं इनकी वेवलेंथ इतनी तेज़ होती हैं जो कि कांच को एमिट करके अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही कांच को एमिट करके अंदर जाती हैं तो वो अपनी वेवलेंथ थोड़ी सी ड्रॉप करती हैं, जिसके कारण वो बाहर कांच से नहीं आ पाती हैं, तो वो अंदर जाएंगी और वो वहीं रह जाएंगी, जिसके कि अंदर वाले पूरे एटमोसफेयर वो हीटअप करना चालू कर देंगे, और उसी कारण आपका जो बाहर का तापमान अगर 40 है तो अंदर का आपको 5 से 10% टेम्परेचर आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इसको बचाने के लिए हम दो तीन चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल फ्रंट ग्लास पे एक अम्ब्रेला चला है जो रिफ्लेक्शन कर देता है, सिल्वर रिफ्लेक्टर रहता है उसमें, आप उसको लगाइए ताकि एमिट ना हो, रिफ्लेक्ट करके वो बाहर निकल जाए तुरंत, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी के विंडोज़ हैं जो 4 विंडो हैं उनको आप एक एक इंच छोटा सा खोल के रखिए ताकि

0: जो रेज अंदर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उस छह गैप जो आपका मेंटेन करके रखा है उससे वो बाहर निकल जाए और तापमान आपकी गाड़ी का बाहर के तापमान के बराबर ही मेंटेन रहे। तीसरा, इस पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि गाड़ी के अंदर गर्मी के समय में अपन को कौन से कौन सामान है जो नहीं रखने चाहिए। जैसे पानी की बोतल, अपन लोग पानी पीते हैं और पानी की बोतल को अपन रख देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर नीचे गिरी है और डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है तो वो भी हीट होते होते होते होते हीट होते होते वो भी कहीं ना कहीं आग पकड़ने का कारण बन सकती है। और आपका कांच की बोतलें मत रखिए, ऐसे कोई भी पदार्थ जो ज्वलनशील हो जो गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो गर्मियों के दौरान जब आप रोड पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तब उसको आप उसके अंदर मत रखिए, उससे बचिए।
1: थोड़ा सा एक सवाल ये है कि अगर जैसे गाड़ी सीएनजी है, बहुत सारे लोग उसमें इंस्टॉल करवाते हैं अलग से, तो एहतियातन तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो सीएनजी अगर आप कहीं भी अपनी गाड़ी में अलग से लगवा रहे हैं, कंपनी फिटेड नहीं आ रही है और अगर आप अलग से लगवा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो आरटीओ अप्रूव्ड सीएनजी का इस्तेमाल करिए, जिसमें आरटीओ ने बहुत सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज लगा के रखे हैं जो ऑथराइज डीलर ही डाल सकता है और उनके पास उनके वेल मेंटेन और वेल ट्रेंड स्टाफ रहता है जो कि उनको अच्छे से फिट कर सकता है। तो कोशिश करिए अगर आप बाहर से अपनी सीएनजी किट लगवा रहे हैं तो आप ऑथराइज डीलर से और आरटीओ अप्रूव्ड लगवाइए और उसको हर साल एक बार आपका जो सिलेंडर है उसको आप चेक कराते रहिए, उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है, वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, उसको क्लीन कराइए, उसकी टेस्टिंग होती है हर साल। आप इसे गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, वैसे आप अपने गैस किट के, गैस सिलेंडर की आप टैग बुक कराते रहिए, जो पुरानी गैस पानी बन रही है, जो उसमें कंडेंस होकर रुक रही है उसको निकलवाते रहिए, रस्टिंग नहीं होगी तो आपका सिलेंडर काफ़ी लंबा चल जाएगा।
1: बिल्कुल, तो आप इन बातों का काफ़ी ध्यान रख सकते हैं गर्मियों में गाड़ी चलाते वक्त। ये जानकारी हमें दे रहे थे एक्सपर्ट आदर्श खरे। सुधीर जी के साथ चलिए शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म सरफरोश से। आवाज़ है जगजीत।

0: श्रोताओं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अब मेंटल हेल्थ, डायबिटीज और बीपी को शामिल किया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है, इस पर हमने एनएचएम के संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से बातचीत की।
1: देखिए, ट्रेडिशनली जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो शासन ने वर्ष 2013 में शुरू किया था और इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चे एडोलेसेंट्स उनको हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। जो सबसे मुख्य इसकी बात है

0: वो है मोबाइल हेल्थ टीम्स के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग करना। वो स्क्रीनिंग हम जो 4 Ds कहते हैं उनके लिए करते हैं। पहला है डिफेक्ट्स एट बर्थ, दूसरा डिजीजेज, तीसरा डिफिशियंसीज और चौथा डेवलपमेंटल डिलेज। तो ट्रेडिशनली हम बच्चों की इन चारों में स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद पॉजिटिव पाए जाने पर उनके उपचार की, करेक्शन की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं और ये सुविधाएं भी पूर्णतः निःशुल्क होती है। तो ये सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और इसके लिए किसी भी कार्ड, किसी भी विशेष उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी के लिए उपलब्ध हैं। अब अभी वर्ष 2026 में इसका जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया गया है और ज़्यादा बढ़ाया गया है। आपने देखा होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अब उतना ही ज़्यादा आवश्यक है और इसके लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि पहले भी जो डेवलपमेंटल डिलेज थे या डिफिशियंसीज थी वो इसमें शामिल थी, पर अब इसको और ज़्यादा जोर देने के लिए अलग से शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके लिए भी स्क्रीनिंग ये टीम्स करेंगी। और आप जानते हैं कि जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका इंसिडेंस भी, पहले हम इसको मानते थे कि आम तौर पर ये एडल्टहुड या इवन एल्डरली एज ग्रुप की डिजीज़ हैं, पर आपने देखा होगा कि अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस या जिसको हम डायबिटीज़ टाइप 1 देखते हैं, या कभी कभी डायबिटीज़ का जो टाइप 2 है उसका भी अर्ली डिटेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। इसी तरह से बच्चों में भी स्ट्रेस इंड्यूस और दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने के कारण हाइपरटेंशन के मामले भी देखने में आए हैं। तो इनको दृष्टिगत रखते हुए मानसिक विकार, उसके साथ में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, विशेषकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को भी इसमें शामिल किया गया है।
1: जी सर, मुख्यतः देखें तो यदि बच्चों में इस तरीके के हाइपरटेंशन और ख़ास तौर से मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जा रही है, तो इसका क्या वजह हो सकती है? अभिभावक किन बातों का ध्यान रखें?
0: देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखा होगा कि अब डे बाय डे, दिन पर दिन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती चली जा रही है। अधिकतर बच्चे कंप्यूटर के साथ, टीवी के साथ, या जब से डिश टीवीज़ वगैरह शुरू हुए हैं तब से उनके साथ लगातार रहते हैं। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के कारण उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों के साथ इंट्रैक्शन कम होता चला जा रहा है। आपने देखा होगा कि पहले जब बच्चे रहते थे शाम के समय इकट्ठा होते थे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, गेम्स खेलते थे, जिसके कारण उनका इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता था और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ होने के कारण वो जो इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें मोटापा भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं, तो अंडर या ओवर न्यूट्रिशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये भी काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ हम इनका डायग्नोसिस बढ़ रहा है उस कारण से ये नंबर बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं उनके कारण भी ये देखने को मिल रही हैं। और आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इनको अगर टाइमली नहीं पहचाना गया तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ में जो कीटो एसिडोसिस रहते हैं उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि इवन जानलेवा हो सकता है।
1: राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ख़ास तौर से मेंटल हेल्थ को अभी शामिल किया गया है, इस विषय के ऊपर हमें जानकारी दे रहे थे NSM के संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। इसके साथ चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम के आखिरी गीत को हम शामिल करते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। आवाज़ है कमाल खान की।

0: तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई सूचना जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में विवेक आहर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
3: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का

0: तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक

0: अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और

0: चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former

आज के दौर में रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग मोबाइल सोशल मीडिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अपने लिए या अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं मिल पाता। छोटी छोटी गलतफहमियां, गुस्सा और मैं की सोच यानी मैं रिश्तों को कमज़ोर कर देती है, जबकि रिश्ते निभाने के लिए सब्र, भरोसा और एक दूसरे की इज्जत बहुत ज़रूरी होती है।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
1: जैसे?
0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
5: दोस्तों, रिश्ते तो कई होते हैं, लेकिन कहते हैं या मानना पड़ेगा कि माँ बाप से बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है माँ बाप से जो रिश्ता है वो। उनकी दुआओं में ऐसी ताकत होती है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल राहों से भी आसानी से निकाल देती है। दूसरा होता है भाई बहन का रिश्ता, जो शरारत, अपनापन और हिफाजत का खूबसूरत संगम है। और दोस्ती का रिश्ता भी होता है जो खास होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, कुछ हमारे कर्म से मिलते हैं, क्योंकि सच्चा दोस्त इंसान के सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी झूठे रिश्ते भी होते हैं जो बाद में पछताना पड़ता है। तो जब भी कोई नया रिश्ता बनाएं तो पुराने रिश्तों को एकदम से इग्नोर ना करें, क्योंकि पुराने रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, जबकि नए रिश्ते कई बार सिर्फ मतलब से जुड़े होते हैं।

रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, रिश्तों के साथ में जो बंधन है वो मजबूत होना चाहिए। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, कभी इन्हें अगर मजबूती से ना जोड़ा जाए तो टूट जाते हैं और फिर जोड़ने पर गांठ लग जाती है। और कहते हैं ना कि जो रिश्तों में गांठ लग जाए तो फिर रिश्तों को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए सबसे ख़ास बात है कि उम्र भर उसको मजबूत रखने के लिए जो सबसे कि उसमें झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं होना चाहिए, बेहयाई या बेवफाई नहीं होना चाहिए। जो दरारें हैं पैदा हो जाती हैं बेवफाई से, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने रिश्तों को की कद्र करे, अपनों को वक्त दे और मोहब्बत के साथ रिश्तों को सींचता रहे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जो कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं, वो बड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कण कण में अगर हम खूबसूरती देखना चाहते हैं तो हमें मालिक का उसमें

एहसास होता है। और चाहे वो नदियाँ हों, पेड़ पत्ते हों, जंगल हों, इसमें अगर हम खूबसूरती से देखते हैं तो ये रिश्ता जो होता है ये हमेशा बहुत मज़बूत होता है। और इस रिश्ते को मज़बूती से बनाए रखने के लिए हमारे भी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको हमें बखूबी निभाना चाहिए कि ये रिश्ता मज़बूत रहे, ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी ये एक नायाब तोहफा हो।

असल में रिश्तों को ही असल अहमियत देना चाहिए। असल में रिश्ते ही इंसान की असली दौलत होते हैं। वैसे भी मोहब्बत और रिश्ते यही बाकी रहते हैं। पैसा और शोहरत एक ना एक दिन कम हो सकती है, लेकिन जो बनाए हुए रिश्ते हैं वो अगर एक बार मजबूती से बंधे हुए हैं तो वो सहारा बनते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। जहाँ रिश्तों में मोहब्बत, वफा और भरोसा होता है, वही रिश्ते जन्नत बनाते हैं हमारी ज़िंदगी को।

0: दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 8:58 हुए हैं। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्रियों और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी है। मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है, साथ ही आम लोगों से भी अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा और ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हरा कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का दूसरा भाग। श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, रिश्ते जी हाँ, इंसानी जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं बड़ी अहमियत रखते हैं। रिश्ते केवल खून के नहीं बल्कि मोहब्बत, अपनेपन और एहसास से भी बनते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि माँ बाप का साया, भाई बहन का प्यार, दोस्तों की वफादारी और जीवन साथी का भरोसा इंसान की जिंदगी को खुशनुमा बना देता है और एक रिश्ता विश्वास और एहतराम की बुनियाद पर टिका होता है। हर रिश्ता जहाँ दिलों में सच्चाई और खुलूस होता है, जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, छोटी छोटी बातें, नरम लहजा और एक दूसरे की फिक्र रिश्तों में मिठास पैदा कर देती है और यही रिश्तों को मजबूत बनाती है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण, और अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका दूसरा भाग सुनेंगे आप इस घंटे की खास खबरों के बाद। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। दोस्तों, कहते हैं कि आज के दौर में या हमेशा से जो रिश्ते होते हैं वो मसरूफियत कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। अपनों के लिए कम वक्त मिल पाता है, या ये कहें कि वक्त निकाल नहीं पाते। इसी वजह से कई रिश्तों में दूरियां या गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अगर रिश्तों में मोहब्बत है या रिश्तों को मोहब्बत, सब्र और समझदारी से निभाया जाए तो रिश्ते बहुत दूर तक जाते हैं।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: रिश्ते धूप में ठंडी छांव जैसे, सर्द रातों में जलते अलाव जैसे, कभी हंसी की मीठी खरगोश सरगोशी, कभी आंखों में ठहरा ख्वाब जैसे। माँ की दुआ का असर है रिश्ते, बाप की मेहनत का सफ़र है रिश्ते, भाई का हौसला, बहन की ममता, दोस्ती की सच्ची नज़र है रिश्ते। जब दिल उदास हो, तनहा हो, ये रिश्ते ही तो सहारा बनते हैं। दुनिया चाहे साथ छोड़ भी दे, अपने फिर भी हमारा बनते हैं। रिश्तों में मोहब्बत जिंदा रखो, लबों पर मीठी बातें रहने दो, नफरत की आंधी चाहे आए, दिलों में चाहत के दिए चलाए रखो। दौलत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, ऐसी दुनिया अक्सर कहती है, मगर सच तो ये है, ऐ दोस्त, रिश्तों में ही जिंदगी महकती है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं प्रेम शंकर शर्मा। इनके गाए भजनों का आनंद लीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रेम शंकर शर्मा का गाय भजन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब से ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। ऑपरेशन सिंदूर साहस रणनीति राष्ट्र सेवा की मिसाल है। इस ऐतिहासिक अभियान की पहली वर्षगांठ पर हम चर्चा करेंगे उस अदम्य साहस अनुशासन और देशभक्ति की जिसने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर सर, पहला सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
3: कई दशकों से भारतवर्ष जो है पाकिस्तान से उत्पन्न हुए जितने भी आतंकवादी हमले या आतंकवादी गतिविधियां थी उससे हम लोग काफी प्रभावित थे।
2: बिल्कुल,
3: वो एक चरम सीमा में पहुंच चुकी थी जिसमें कि हमारे देश के अस्तित्व को चुनौती दिया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश को पता है।
2: बिल्कुल।
3: वो एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार किस्म का एक हमला था इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट को यूज़ करके, और एक जवाब जो देना था वो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट दिया। अगर किसी को लगता है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया, ऐसा शायद ना हो, लेकिन हाँ आतंकवाद को कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वजह थी सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बुधानी सर, जब भी किसी तरह का ऑपरेशन होता है या फिर हम जिस तरह की भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, तो उस समय हालात कितने कठिन होते हैं जमीन पर, जो सेना के हमारे जवान होते हैं उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
5: देखिए,

0: युद्ध या कोई भी ऑपरेशन शुरू करते समय एक बहुत कम से कम वार्निंग टाइम दिया जाता है, जिससे कि जो आपका ऑपरेशन है उसकी गुप्त उसका गुप्त नेचर बना रहे और बहुत ही त्वरित प्रक्रिया करनी पड़ती है और कई सालों की ट्रेनिंग और अभ्यास से जो ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स सेट इन किए गए होते हैं उनको क्रियान्वित करना होता है उस दिन उस समय के हालात मौसम और परिस्थिति को नज़र रखते हुए।
1: बिल्कुल
0: तो मैं ये कहूँगा कि एक एक बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है सशस्त्र सेनाओं को हर समय कि कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें ऑपरेशन में जाना पड़े, हमें लड़ाई जैसी स्थिति या लड़ाई करनी पड़े और हम उसके अंदर विजयी हों, हम उसके अंदर अच्छा रिजल्ट हासिल करें।
1: आप बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजय सर, किसी भी अभियान की सफलता के पीछे उसकी रणनीति पर निर्भर करती है पूरी सफलता। तो ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस प्रकार बनाई गई और क्या आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत

0: कि हमें ऑपरेशन में जाना पड़े, हमें लड़ाई जैसी स्थिति या लड़ाई करनी पड़े और हम उसके अंदर विजयी हों, हम उसके अंदर अच्छा रिजल्ट हासिल करें।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजय सर, किसी भी अभियान की सफलता के पीछे उसकी रणनीति पर निर्भर करती है पूरी सफलता। तो ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस प्रकार बनाई गई और क्या आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की कितनी भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में?
2: बिल्कुल सही कहा दीपा आपने। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन्स मिले हैं वो ये दिखाता है, आज एक साल हो गए हैं, कि जॉइंट ऑपरेशन कितना ज़रूरी है और तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उन्होंने ये दर्शाया है कि एक दूसरे के साथ मिलके कैसे हम दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रेसिशन स्ट्राइक दिखाया गया है। प्रेसिशन स्ट्राइक का मतलब ये है कि कितनी सटीकता से हम अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमारे भारतीय वायुसेना ने वो करवा के दिखाया है, जिससे कि शायद विश्व में सारे देश काफ़ी अचंभित हो गए थे कि भारतवर्ष ये कर सकता है पाकिस्तान के अंदर डीप घुस करके अपने एयरफोर्स से तथा मिसाइलों से।
1: जी,
2: आपने सही बताया कि तकनीकी जो बढ़ोतरी हो रही है लड़ाई में, युद्ध के क्षेत्र में, उसके साथ देश को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में जैसे हम ईरान के आसपास देख रहे हैं किस तरह के वहाँ पे युद्ध हुए हैं, सो आज तकनीक की जो हमें चाहिए विशेषता है उस पे देश को रोज सोचना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ानी होगी। शायद अगर हम सिर्फ बोले कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, वो ताकत आएगी जब हम साथ ही साथ सेना तकनीक के साथ आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
2: और शायद आगे ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशंस हुए तो हमें अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी कि हम कितने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में।
1: टेक्नोलॉजी की हमने बात की है कि वाकई अभी हम लोग काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। बात करें अगर रक्षा बजट की, तो इस साल का जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट को दुगुना किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: देखिए, रक्षा बजट को दुगुना करने का मतलब ही यही है कि भारतवर्ष चाहता है कि अपनी रक्षा सेवाओं को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने में हम देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी कितने हम ला सकते हैं और उस पे काम चल रहा है। तो हाल ही में आप अगर पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, ड्रोन्स इतने यूज़ हो रहे हैं कि आज देश भर में हमारी जो युवा है उनको सिखाया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और युद्ध के क्षेत्र में भी अब हवा में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि जिससे कि शायद पैदल सेना से ज़्यादा तकनीकी सेना पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो हमारे लड़के लड़कियां जो भारतीय सेना में, सशस्त्र सेनाओं में जा रहे हैं, और उनको ये शिक्षा दी जा रही कि वो कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो और उसको यूज़ करने की क्षमता बढ़ाए।
1: बिल्कुल,
2: इसी से देश के रक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी आएगी, हमारी सोच बदलेगी, और शायद इसी में मैं सोचता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम ऐसा लाएं कि हमारा हर एक बच्चा जो युवा बन रहा है और आगे के लिए सोच रहा है, डेली अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के यूज़ को आगे संभालता रहे, बढ़ाता रहे और उसका इस्तेमाल करता रहे।
1: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और जो हमारे नए जवान, नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो भी, उनको भी अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो भी टेक्नो फ्रेंडली रहें और काम आसान होता रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि हम तो अपने जवानों को अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे धीमे धीमे। सो हमारे जो जवान हैं और उनको सिखाया जा रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर के साथ कदम से कदम मिलाए टेक्नोलॉजी के साथ।
1: राकेश सर, जब जवान मैदान में उतरते हैं तब आपने जिस तरह से बताया, बाकी फील्ड पे तो बहुत सारी तैयारी होती है, मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है उनको?
0: अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहूँगा कि शारीरिक तैयारी लगभग हम कहें तो 20% और मानसिक तैयारी 80% है। युद्ध बड़ी अनिश्चित हालात में लड़े जाते हैं, रात के समय लड़े जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में लड़े जाते हैं, परिवार और यूनिट की टीम में बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फियर होता है, और ऐसे तौर पे एक सिपाही से लेकर के सीनियर से सीनियर अधिकारी को

0: मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होता भी है, और बड़े चैलेंजेस आते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे लीडरशिप से उस चीज़ को पाया जाता है, जैसा कि हमने हिंदुस्तान के सभी युद्धों के अंदर देखा है कि हमारी लीडरशिप और हमारी ट्रेनिंग के कारण हमारी सेना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
1: सही कहा आपने एकदम। ब्रिगेडियर सर, आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहिए, जैसा कि कर्नल सर ने शेयर किया है?
2: जैसे अभी आप देखते हैं युद्ध जो भी छोटे मोटे हुए कारगिल के बाद, 1990 की बात है जब भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जब आतंकवाद का साया शुरू हुआ था, तो तब हम वहाँ पोस्टेड थे और वहाँ LOC पे डिप्लॉयड होते थे उरी के पास पहाड़ों में, और उस वक्त जो आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, और वो JKLF जो है पाकिस्तान की तरफ से PO की तरफ से हाजी पीर पास को पार करने के बाद धमका रहे थे भारतवर्ष के अंदर घुसने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए जैसे POK और JNK हमारे तरफ सब सेम है। उस वक्त मैं भारतीय सेना के आर्टिलरी में था और हमारे पास सिर्फ नया नया बोफोर्स था, और उन बोफोर्स के तहत और अपने जो इंडियन गन्स थे तो उनको मेरे नीचे एक टुकड़ी को दिया गया था कि आप अगर लगता है, और मेरी तब उम्र कम थी और मैं सिर्फ एक नया नया कप्तान बना था,
1: बिल्कुल
2: एक कप्तान बन के ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे पास 6 बोफोर्स हैं और 6 IFG है, उनको मैं खोल दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप आतंकवादियों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद फिर आपको सिखाया गया है, आप सोचते हैं कि देखिए इसका क्या होगा अगर मैंने तोप चला दिए, तो कोई ना कोई तो हाँ बोल देगा आपके कहने पे, क्योंकि आपको लग रहा है हमला होने वाला है। उस रात शायद हमने हमला नहीं किया और हम देख रहे थे कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ था, 3 Sikh Regiment, और उनके जवानों ने ही जवाबी कार्रवाई में उनको शांत कर दिया। तो हमारे पास अभी भी भारतीय सेना के सारे अंग में ऐसा है कि इतना जज्बा है कि हम शायद तोप खोलने की जरूरत ना पड़े और हमारी भारतीय सेना वैसे ही शांत करते लोगों को, तो वो मुझे आज भी याद।
1: वाकई बहुत प्रेरणादायक किस्सा है, बिल्कुल सही कहा आपने। राकेश पुधानी सर, देश का युवा जो सेना को प्रेरणा के रूप में देखता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देश का युवा सेना से बहुत ही प्रेरित है, और ये पता चलता है जो सेना के लिए भर्ती रैलियाँ होती हैं जवानों की, और ऑफिसर एंट्री के लिए NDA का एग्ज़ाम, CDS का एग्ज़ाम होता है, और देश का युवा चाहता है कि वो देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे, और ये चीज़ें हमें जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम्स के टाइम देखते हैं तो अच्छी ये चीज़ खुल करके सामने आती है, और सेना में होने के कारण हम उन्हें हमेशा इसकी शुभकामनाएं देते हैं।
1: संजय सर, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी।
2: जी, युवाओं के लिए देखिए आज भी क्या है कि हमारे देश के युवा सेना से बहुत प्रभावित है।
1: जी,
2: ये पता चलता है आंकड़ों से कि साल में 2 बार UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं सेना के अफसर बनने के लिए, NDA के लिए या CDS के लिए, लाखों में कैंडिडेट आते हैं। इसके अलावा अग्निवीर बनने के लिए भी लाखों में, हजारों में कैंडिडेट आते हैं, ये आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों से क्या दिखाता है कि भारतीय सेना की नौकरी, सशस्त्र सेनाओं की नौकरी, तीनों अंगों की नौकरी के लिए इस देश की युवा में बहुत चाह है। अगर ये चाह है तो इसके वजह कोई पीछे कोई वजह है, और वो ये वजह है कि हमारी युवा आज भी समझती कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाके नौकरी जो है एक अलग ही पद्धति की नौकरी है, जिसमें कि आप जिंदगी को व्यतीत करने वाले हैं यूनिफॉर्म में, देश के लिए, अपने भले के लिए भी, और एक ऐसा करियर जो आपको ग्रोथ ही देता है, हमेशा आपके परिवारों को देखभाल भी कर रहा है और साथ में आपका बढ़ावा हो रहा है, करियर प्रोग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि आपकी बुद्धि खुल रही है, आपको देश के बारे में और विदेश के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लग रही हैं, तो एक आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। सो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब वो गुड सिटीजन क्या होता है कि वो बनाता है एक देश की छवि, और देश की छवि से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो यही

0: सोच के मुझे लगता है कि युवाओं का रुझान जो है बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के बारे में जब वो पढ़ते हैं, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी की किताब में भी डाल दिया गया है एक चैप्टर में, तो ये होना चाहिए, और ये होगा तो हमारे बच्चे जो अगले जनरेशन के लिए बन रहे हैं उनको पता रहेगा अपने हिस्ट्री के बारे में, और वो आगे समझ सकेंगे कि देश की डेफिनेशन क्या है।
1: किताबों के माध्यम से जो हमारे देश का यूथ है वो अपनी सेना के अदम्य साहस और शौर्य को जानेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जिस तरह से हो रहा है, सिंदूर नाम अपने आप में बहुत ही भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कुछ विशेष कहानी?
0: देखिए, हम और आप मिलके ये नहीं बता सकते कि क्यों ये नाम दिया गया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन एज अ कॉमन मैन जो कि सोसाइटी में है, मुझे जैसा लगता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था आतंकवादियों का, उसमें उन्होंने टारगेट करके बहुत सारे औरतों के सिंदूर मिटाए थे और मारा था उनके हस्बैंड्स को, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो अगर उन्होंने सिंदूर मिटाए हैं तो मेरे ख्याल से ये नाम यही सोच के रखा गया है कि सिंदूर को कैसे उसका दिखाया जाए असली रूप।
1: बिल्कुल।
0: और यही मुझे लगता है कि किसी ने भारतीय सेना में बैठ के जब ये नाम सोचा होगा तो उन्होंने ये नाम सोचा होगा कि किसी के सिंदूर को मिटाया तो हम उस सिंदूर को ही वापस लाते हैं।
1: अब बिल्कुल सही कहा। बुधानी सर आपकी क्या राय है?
2: बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर संजय घोष से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात में। भारत का जो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है वो है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, और जीवन की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन ये हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि हित है हमारे नागरिकों के लिए, और ये हमारे ये एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। तो जैसे कि हमने देखा पहलगाम के आतंकवादी हमले में एक यंग कपल, जिसके अंदर एक यंग विडो अपने पति के देह के साथ बैठी हुई है, और वो एक प्रतीक बना, सिंदूर एक प्रतीक बना हमारे रिटेलिएशन का, और उस सिंदूर नाम ने, उस भावना ने हमारे रिटेलिएशन को रूप दिया कि ये था हमारा सोच उस हमले के प्रति, और हम उसको इस रिटर्न तरीके में क्रियान्वित करते हैं।
1: बिल्कुल ब्रिगेडियर सर, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं पहली वर्षगांठ की, तो ऑपरेशन सिंदूर को संचालित करने में 3 महिलाओं ने ही सबसे मुख्य भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
0: देश को 3 महिलाएं दिखाई गई थी, लेकिन मैं बताता हूँ इन तीनों के अलावा सैकड़ों और महिलाएं थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना फर्ज निभाया है।
1: बिल्कुल,
0: हर एक फाइटिंग आर्म्स में और सपोर्टिंग आर्म्स में, जिधर नेवी में। सो महिलाएं जो है इस वक्त काफी अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं तीनों अंगों के भारतीय सशस्त्र सेनाओं में, और मैं ये कहूंगा कि आज इतने साल हो गए जब महिलाएं आई हैं सशस्त्र सेनाओं में, उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ढाल चुकी हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस के यूटिलाइजेशन में। और जैसे कि देश ने उन तीनों महिलाओं को देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग में, और उसके बाद कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको देख के आपको लगा होगा कि वो किस लेवल के मैच्योरिटी पे पहुंच गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो देख के हमें लगता है कि महिलाएं जो हैं भारत के सशस्त्र सेनाओं में आगे भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये होता है कि हायर डिफेंस मैनेजमेंट पे कि जब आप जाते हैं ऊपर और देश के वेरियस पॉलिसीज़ और इन डिसीजंस को समझते हैं, एक यंग महिला और आगे चल के 12-15 साल बाद उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी कैसे आती है, और वो कैसे निभाते हैं अपने टास्क को, वो प्रदर्शन किया है महिलाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद देश को उस प्रदर्शन का एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: जो कि शायद दीपा जी आप इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास वो छवि अभी भी अच्छा दिख रहा होगा आपके दिमाग में उन तीनों महिलाओं को स्टेज पे बैठ के देख के। यही रीजन है कि बाकी जो नए लड़के लड़कियां जा रहे हैं भारतीय सेना में अफसर या अग्निवीर बन के भी, वो प्रेरणा ले रहे हैं और वो प्रेरित होते रहेंगे।

0: कि शायद हम भी एक दिन वहाँ पे उस टेबल पे बैठ सकें।
1: सही कहा आपने सर। बुधानी सर, जिस तरह सर ने बताया कि महिलाएं वाकई हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, सेना में भी उनका लगातार बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको?
0: बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है देश के अंदर महिलाओं को, और NDA के अंदर अगर हम लें तो यंग गर्ल्स को मौका मिल रहा है सैन्य सेवाओं में आने का और अपने मर्जी का प्रोफेशन चुनने का। चैलेंजेस हैं, एडवेंचर है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और ख़ासकर वे कन्याएं या महिलाएं जिनके पिता, जिनके नाना, जिनके दादा फौज में रहे हुए हैं, जो कि पहले नहीं सोच सकती थी कि हम भी एक प्रकार का फौजी जीवन जी पाएं, उनके लिए ये मौका उपलब्ध किया गया है।
1: संजय सर, ये सवाल है कि जब भी सेना कोई युद्ध संचालित करती है या फिर ऑपरेशन होता है, तो उस समय जो है जो ऑफिसर्स की फैमिली है या जो जवान है उनकी फैमिली है, उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है?
2: आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि
1: जी
2: एक दशक था जबकि देश में कम्युनिकेशन सेवाएं इतनी अग्रसर नहीं थी
1: जी,
2: लेकिन आज हम रियल टाइम में हमें सब कुछ पता चल जाता है।
1: बिल्कुल।
2: ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ प्रेशर बढ़ता है, और जो फैमिली है, अगर उस फैमिली का स्ट्रेस जवान या ऑफिसर पे आने लगे, तो उसको अपने बैटलफील्ड पे या जहाँ पे भी कार्यरत है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जो फैमिलीज है उनको हमेशा अपने फैमिली के जो भी लोग हैं सेना में, उनका मनोबल बढ़ाए रखें। अगर वो अपनी वीकनेस को उन तक जाहिर होने देंगे तो वो इफेक्ट होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सारे महिलाओं को या माता पिताओं को या जो भी है जिनके हस्बैंड है या जिनके फादर हैं, आप जब वो नौकरी पे हैं तो आप अपनी वीकनेस को ज़्यादा जाहिर ना करें, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी डावाडोल हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं के घर में फौज में लोग होंगे वो इसे समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे भी।
2: दीपा जी, ये फैमिली के बारे में जो आपने पूछा कि कैसे इफेक्ट होता है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पहले बोला था 1990 में एक हाजीपीर का ये इंसिडेंट, तो उसी वक्त उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद मैं सामने LOC पे एक BSF पोस्ट था, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया गया क्योंकि मेरे पास तोप थे चलाने के लिए, मेरे पास और 3 सिख बटालियन की एक प्लेटून थी साथ में
1: जी।
2: और वहाँ पे जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर डिप्लॉयड था, उसकी फैमिली बरेली में रहती थी, उसकी 2 बेटियाँ थी, आज भी मुझे याद है, एक बेटा था और बीवी उसकी बरेली में थी। तो जब हमें खबर मिला कि आज हर हाल में शायद पाकिस्तानी या साथ में उनके जो टेररिस्ट है वो हमारे पोस्ट पे अटैक करने वाले, और उनका पाकिस्तानी पोस्ट सामने दिख रहा था, 100 मीटर पे था, तो ये जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठे हुए थे और वो बेचारे बहुत ही घबरा गए। उन दिनों थैंकफुली मोबाइल फ़ोन नहीं था हमारे देश में, सो इसलिए बात बात नहीं हो पाती थी। लेकिन वो मुझे रात को बोलने लगे कि सर, आपकी तो शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो उस वक्त मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि फैमिली का क्या रोल होता है दिमाग पे।
1: बिल्कुल।
2: और मैंने उनको बोला कि देखिए, आप अगर समझते हैं कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप कृपा करके पीछे चले जाए 50 मीटर पे, दूसरी कंपनी पोस्ट भी थी। मैंने कहा आप निकल लीजिए, मैं अकेले यहाँ संभाल लूँगा। उस वक्त खैर मैं तो नया नया कप्तान बना था, मेरी 2 साल की शायद नौकरी थी, तो मुझे आज भी याद है कि कैसे प्रेशर बढ़ता है फैमिली के होने से, उनकी सोच की होने से।
1: बिल्कुल।
2: और उस वक्त युद्ध में आप किस तरह से डावाडोल हो सकते हैं, जो मैं बता रहा था
1: जी जी।
2: तो जब आपने मुझे प्रश्न पूछा, मेरे दिमाग में सीधे आज से इतने साल पहले का वो वाकया सामने आ गया, बंकर में बैठ के जो वार्तालाप हो रहे थे वो उन इंस्पेक्टर के साथ।
1: तो
2: इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर, फैमिलीज को चाहिए कि वो सपोर्ट करते रहे, नहीं तो हमें वहाँ पे काम करने में बाधाएं आ सकती
1: हैं। बिल्कुल। तो मेंटली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके पिता हैं, भाई हैं, जो भी फौज में हैं या कोई महिलाएं भी हैं, तो उनका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। घर की छोटी मोटी टेंशन तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो देश हैंडल कर रहे हैं। कर्नल बुधानी।

0: नहीं, आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ?
1: सियाचिन की बात है, सन 1996 की। मैं वहाँ पर तैनात था। मौसम बदलता है, कभी गर्मियाँ होती हैं, जैसे साल में होता है गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। हम लोग जब सियाचिन की पहाड़ी पे चोटियों पे चढ़े तो गर्मी का समय था, और एकदम फिर सालाना जैसे मौसम चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम जो छोटी छोटी बंकर्स खंदक बनाते हैं और उसके अंदर स्वयं की भाप से और ठंड से वो दिन भर सिकुड़ते जाते थे। उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमा होती जाती थी। तो हमारे एक सैनिक थे जो कि चूंकि वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, आपके लगभग 3 साढ़े 3 महीने उसी बंकर और उसी छोटी सी चौकी पर आपका समय निकल जाता है। तो वो क्रॉल करके आगे वाले पोस्ट पे गए हुए थे, और महीने भर बाद जब उन्हें इस तरफ वापस आना था तो वो खंदक जो है, वो सुरंग जो है, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो हमने उन्हें ये कहा कि देखो, तुमने महीने भर बहुत यहाँ पर फौज का राशन खाया है, तुम मोटे हो गए हो और तुम इससे अब बाहर नहीं आ पा रहे हो। खैर, ये एक
0: बिल्कुल.
1: लाइटर हंसी मजाक का विषय है। तो बोला, वो खुद बोलता था सैनिक, नहीं साहब, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं खा पाता हूँ, खाने का मन ही नहीं करता है, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, ये सकरी हो गई है। कुल मिलाकर के हमने उसे तोड़ करके, बर्फ़ को तोड़ करके उसे निकालना पड़ा। लगभग 6 से 8 घंटे ये हमारी कार्रवाई चली, तब उसको हम इस तरफ खींच के ला पाए और बाहर निकाल पाए। तो ये कुछ एक लाइटर किस्से हैं अग्रिम चौकियों पे डिप्लॉयड होने के और वहाँ की जीवन शैली के बारे में।
0: बिल्कुल सही कहा सर, ये हमें फौजियों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आम जो जनता है हमारे जैसे, वो कैसे महसूस कर पाएंगे कि हमारे सैनिकों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए और हम सबको सुरक्षित महफूज कराने के लिए. ब्रिगेडियर सर, जो आज की यंग जनरेशन है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: जो यंग जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, उनको मेरा मैसेज यही है, आप देश की परिभाषा को समझें, वो बहुत ज़रूरी है। शायद हम अपने करियर, अपने सेल्फ को लेके कहीं सोचते रहते हैं, लेकिन देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश से ही एक नागरिक की पहचान बनती है। अगर वो पहचान ही ना रही तो आप तो कहीं के नहीं रहे।
0: बिल्कुल.
2: जो भी युवा है, उनको मेरा यही मैसेज है, आप किसी भी तरह अपने आप को बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये सोचते रहिए कि मेरे इस काम से मेरे देश को क्या इफेक्ट होने वाला है।
0: बिल्कुल.
2: अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो शायद हम सब एक बेहतर नागरिक कहलाएंगे। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सैन्य लोग या सेना में जो है वही देश के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, देश का हर नागरिक शायद देश के लिए लड़ रहा है।
0: जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी.
2: वो शायद ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो दीपा जी आप
0: सेवा नहीं
2: देश
0: कर
2: के लिए
0: सकते हैं.
2: नहीं लड़ रही हैं, आप ही लड़ रही हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि आप जो देश के लिए कर रही हैं वो भी देश को एक डेफिनेशन देता है,
0: बिल्कुल
2: और यही चाहिए युवाओं से।
0: जी. अक्सर ये सोच होती है कि हम सेना में जाएंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे, तो आप अपने स्तर पे भी छोटे छोटे काम करके देश की सेवा कर सकते हैं. पानी बर्बाद मत कीजिए, पौधे लगाइए, बहुत छोटे छोटे से काम है, तो इनको करके भी आप अपना योगदान दे सकते हैं देश की सेवा करके. कनर बधानी, आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं के लिए?
1: मेरा देश के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसा अभी तक हम चर्चा में कहते आए कि देश के प्रति समर्पित रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना एकेडमिक और स्किल डेवलपमेंट करिए और नई से नई ऊंचाइयां हासिल करिए।
0: बिल्कुल. तो आज की बातचीत ने हमें ये समझाया है कि किसी भी सैन्य अभियान के पीछे केवल हथियार नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, रणनीति और राष्ट्र प्रेम होता है. संजय सर और राकेश बुधानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए.
2: धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।
0: बिल्कुल सर. इसी के साथ कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: मीठे वेव DTH के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
5: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकट राव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12,000 से 15,000 रुपए तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1,200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया।

0: उन्होंने आईसीयू कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जैतहरी अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर नवनीत चौबे का। मीडियम वेव डीटीएच का ओरिजिनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम महिला संसार।

स्वागत है हमारी सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। सखियों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बाजार सिर्फ एक सामान लेने गई हो, लेकिन वापस आते आते आपका शॉपिंग बैग भर गया हो और आपका पर्स भी खाली हो गया हो, और फिर जब घर आकर सामान देखा तो लगा कि ये सब लेने की ज़रूरत थी भी या नहीं। सखियों, इसे हम फिजूल खर्च कहेंगे, क्योंकि फिजूल खर्ची हमेशा बड़े खर्चों से नहीं होती है। कई बार चलो ले लेते हैं, बस ये लास्ट है, ये वाली जो खरीदारी होती है ना सखियों, यही धीरे धीरे हमारा बजट बिगाड़ देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पहचाने ज़रूरी खर्च और बिना वजह के खर्च को, क्योंकि आजकल ऑफर इतने आते हैं कि ज़रूरत बाद में याद आती है, सामान पहले खरीद लिया जाता है। बाय वन गेट वन फ्री लिमिटेड ऑफर और सेल खत्म होने वाली है, इन सब लुभावने वाली बातों से मन तुरंत सामान खरीदने को मान जाता है। इन सबसे बचने का आसान तरीका है कि किसी भी चीज़ को तुरंत खरीदने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचें, और अगर एक दो दिन बाद भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी लगे तब उसे खरीद लें। सखियों, जो खर्च हमारी ज़रूरत, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर या हमारे भविष्य के काम आए वह ज़रूरी है, और जो सिर्फ मन या दिखावे के लिए खरीदा जाए या खरीदने के बाद ऐसा लगे कि इसके बिना भी काम चल जाता, वह फिजूल खर्च हो सकता है। सखियों, समझदार खरीदारी वही है जिसके बाद हमें खुशी भी हो और पछतावा भी ना हो। सखियों, हमेशा जरूरत और चाहत में अंतर करें। हमेशा लिस्ट बनाकर सामान खरीदें, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर करने से बचें। इस तरह थोड़ी सी योजना, थोड़ी सी बचत और थोड़ी सी समझदारी हमें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। सखियों, जैसा कि आप जानती हैं, आज बुधवार है और आज हमारा क्रम होता है शीर्षक गीत का। तो आज का हमारा शीर्षक है आवाज़। तो आइए सुनते हैं आवाज़ शीर्षक पर आधारित ये पहला गीत।

0: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला संसार। सखियों, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तेज धूप और गर्म हवाओं ने दिनचर्या को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव किस तरह हो, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं यह भेंट वार्ता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रीति मोतियानी और इनसे बातचीत की है मनीष गजभिया ने।
1: श्रोतोस, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजभिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी इस समय अपने चरम पर है, और गर्मी में होने वाली जो सबसे बड़ी या कहे कि आम बीमारी है वह है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन्हीं विषयों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति मोतियानी जी को। आप MD मेडिसिन हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी, धन्यवाद।
1: प्रीति जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और यह किन कारणों से होता है।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हमारे शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ की मात्रा ग्रहण किए गए पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत देखने को मिलता है, उल्टी, दस्त के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लगता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी में जो हम कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि शरीर में अत्यधिक पसीना आने लगता है और कम पानी का सेवन करने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर है, जिनका शुगर बड़ा रहता है अक्सर, उन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है।
1: जी, तो प्रीति जी, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा आखिरकार बढ़ क्यों जाता है?
2: क्योंकि गर्मी में जो शरीर का तापमान रहता है उसको नियंत्रित रखने के लिए हमें पसीना ज्यादा आता है, जिससे पसीने के द्वारा पानी और साथ में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये है कि हमें प्यास नहीं लगती है तो हम ज्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। बाहर कई बार जो धूप में लोग काम करते हैं उन्हें ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस होने लगता है शरीर से। और कई बार हम गर्मी के मौसम में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, जो कि एक नेचुरल डायुरेटिक होता है, यानी कि शरीर से पानी को बाहर निकालता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और इस मौसम में दस्त, उल्टी भी देखने को ज्यादा मिलते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का एक मुख्य कारण होता है। जो कि
1: जी मैम, ये भी देखा गया कि अक्सर जो शरीर में पानी की कमी जो होती है उसके हम शुरुआती लक्षण किस प्रकार पहचान सकते हैं?
2: इसका सबसे जो पहला संकेत होता है वो है जैसे कि मुंह का सूखना या फिर ज्यादा प्यास लगना। कई बार मुंह में चिपचिपाहट महसूस होना, होठों में एकदम से ड्राई और क्रैक टाइप का आना होठों में, पेशाब का कम होना या पेशाब का रंग गहरा या ज्यादा

0: पीलापन होना या कई बार पेशाब में जलन महसूस होना, अचानक से बहुत कमजोरी होना, थकान होना, एनर्जी कम लगना, कई बार एक टर्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन फॉगिंग, जिसमें पानी की कमी से सडनली पेशेंट को चक्कर आने लगता है, हेडेक बहुत ज्यादा महसूस होता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं इसके हीट स्ट्रोक के।
1: और किसी को भी किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: ज्यादा गर्मी की वजह से यदि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगे या फिर वो अजीब तरीके की बातें करने लगे, कंफ्यूजन में आने लगे, या सडनली बेहोश हो जाए, या उसको एकदम से झटके आने लगे, या उसके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाए, 104 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए
1: जी।
0: या फिर उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल सूखी पड़ने लगे, ड्राई होने लगे, पसीना एकदम निकल जाए पूरे शरीर से, या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होने लगे, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ऐसे केसेस में।
1: जी जी जी। और तेज़ गर्मी में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए?
0: देखिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। जैसे प्यास नहीं हो तो भी हर 1 से 2 घंटे में थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें। यदि आप घर के बाहर काम करते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ORS या नींबू शिकंजी या कुछ ऐसी छाछ, फलों का रस या नींबू पानी वगैरह का सेवन करते रहें। हमेशा गर्मी में ध्यान रखें कि हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और अपने सर को स्पेशली ढक के रखें, टोपी या छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कैफीन है, चाय है, इनका सेवन कम करें क्योंकि ये शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता
1: जी,
0: है।
1: जी। और दिन में जैसे पानी की मात्रा की बात करें तो दिन में किसी भी व्यक्ति को कितने मात्रा में पानी पीना चाहिए, या यूं कहें कि क्या पानी पानी पीना ही मात्र काफी है या उसके साथ हम कुछ और भी ले सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, प्यास लगने का आप इंतज़ार ना करें गर्मी में, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें, कम से कम 10 से 12 ग्लासेस या फिर 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण सिर्फ पानी का कम नहीं होना है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो साथ में आप पानी के कुछ नींबू, छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी होता है, ये पेट को भी ठीक रखता है आपके, फलों का रस पीते रहें, नारियल पानी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, तो ये आपके पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करते हैं।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया, जैसा हम सभी जान रहे हैं कि इस समय धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो धूप में बाहर निकलते वक्त हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है?
0: जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करके निकलें, कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, और हमेशा अपने साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर रखें
1: जी,
0: जिससे आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन करते रहें। अपने सर को हमेशा ढकें, आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा कोशिश करें कि 12 से 4 के बीच आप घर से बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और अदरवाइज थोड़ा सा धूप में बाहर निकलना आप अवॉइड करें
1: जी।
0: और जो कपड़े हैं आपके, सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। आपकी त्वचा का ध्यान रखने के लिए आप कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, सनग्लासेस वगैरह, सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं।
1: और जैसे कि बात करें डिहाइड्रेशन में, खाने का भी अपना एक अलग महत्व होता है। गर्मी में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ और फल जो है हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं?
0: कुछ फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि पानी से भरपूर होते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, संतरा, दही, योगर्ट, पालक, तुरई की सब्जी, या फिर नींबू पानी, छाछ, ORS, ये तो नेचुरल रेमेडीज हैं, ये हमको पीते रहना चाहिए।
1: जी जी जी। और किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए?
0: परहेज़ की बात करें तो ज़्यादा मिर्ची और मसालेदार खाना, जैसे कि समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का सेवन से बचे, क्योंकि ये शरीर में, पेट में गर्मी पैदा करते हैं और एसिडिटी का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। फिर जो कैफीन, अल्कोहल वाले पदार्थ होते हैं या ज़्यादा जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर से पानी की मात्रा ज़्यादा निकालते हैं। और तीसरा हो गया, जैसे ज़्यादा गर्म पदार्थ होते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, ज़्यादा फैट वाला फूड हो गया, अदरक लहसुन हो गया, ये सब शरीर में ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं, और इनको पचाने के लिए हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है।
1: जी जी जी। मैम, जैसा हम लोग अक्सर जानते हैं कि बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी जल्दी इससे ग्रसित हो सकते हैं, तो उन्हें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, बच्चों और बुज़ुर्गों में जो रहता है, प्यास का एहसास बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें बिना मांगे हर घंटे में पानी देते रहें, पानी के साथ साथ उनको ORS या फिर जूस भी देते रहें, उन्हें बिल्कुल सीधी धूप में रहने से बचाएं, धूप में बाहर ना जाने दें, और घर में भी एक पंखा और कूलर जैसा ठंडा वातावरण बनाए रखें, कभी भी उनको बंद कार में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे में उनको डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा।
1: जी बहुत उपयोगी।

0: जानकारी और निश्चित तौर पर आपकी जो जानकारियां है हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। अब डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को लू या हीट स्ट्रोक लग जाए तो तुरंत उसे क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए?
1: तुरंत यदि किसी को हीट स्ट्रोक लग जाए तो सबसे पहले उसके शरीर का हमको जल्दी से जल्दी तापमान कम करने की ज़रूरत होती है। 30 मिनट के अंदर हमको उसका तापमान कम करना है, नहीं तो वो बेहोश भी हो सकता है, उसको झटके भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले पीड़ित को तुरंत धूप से हटाकर किसी ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं और पंखे के माध्यम से या हाथ के माध्यम से उसे हवा करें, शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। उसके लिए आप एक गीली चादर या तौलिए से शरीर को ढक सकते हैं, या फिर कुछ बर्फ के पैक्स आते हैं, आइस पैक्स, उसको उनके गर्दन या हाथों के नीचे रख सकते हैं। और यदि वो होश में है, बेहोश नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा पानी या ORS पिलाएं। यदि बेहोश है तो बिल्कुल भी उसको कुछ भी पीने के लिए ना दें, तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट करवाएं और उसको डॉक्टर को दिखवाएं।
0: जी, निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो क्या उसमें डिहाइड्रेशन के खतरे को भी ये बीमारियां जो है वो बढ़ाती है?
1: जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीज़ों में बार बार पेशाब आने के कारण पानी की कमी जल्दी होने लगती है, इससे उनकी नसें और ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जैसे हम वाटर पिल्स कहते हैं, जो कि शरीर से पानी निकालने का काम करती हैं, तो ऐसे में उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है।
0: जी मैम, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेगी हमारे श्रोताओं को ताकि वे गर्मी और डिहाइड्रेशन से सुरक्षित रह सके?
1: जी, गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखिए कि आपका शरीर जो है एक मशीन की तरह ही है, जिसे ठंडा रखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो घर से निकलते समय पानी पीकर निकलें, अच्छा नाश्ता करके निकलें, और अपने आसपास जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। और दूसरी चीज़ यह है कि यदि किसी को हीट स्ट्रोक या लू लग रही है तो उसको बुखार या इन्फेक्शन समझ के पैरासिटामोल ना दें, क्योंकि पैरासिटामोल से इसका खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो हीट स्ट्रोक है वो आपके शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से, ना कि इन्फेक्शन की वजह से।
0: जी, निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी जानकारी, और हम अपने श्रोताओं को यही कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें जरूरत है तो थोड़े एहतियात बरतने की। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें उपाय बताए हैं, उन उपायों को अपना कर निश्चित तौर पर हम डिहाइड्रेशन और गर्मी से अपना स्वयं का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: सखियों, भी आप सुन रही थी डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव विषय पर डॉक्टर प्रीति मोतियानी से मनीष गजभिये की बातचीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारे सेगमेंट शीर्षक गीत की। सखियों, कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से पहले उसकी आवाज़ से बनती है, और आकाशवाणी से हमारा और आपका रिश्ता भी तो आवाज़ से ही है ना। हम एक दूसरे को देख पाते हैं, ना ही मिल पाते हैं, फिर भी दिलों तक जो बात पहुंचती है वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के सहारे ही पहुंचती है। कभी ये आवाज़ खबर बनकर आती है तो कभी गीत बनकर दिल को छू जाती है, कभी अपनेपन की तरह साथ निभाती है तो कभी हमारी आवाज़ ही हमारी असली पहचान बन जाती है, और यही आवाज़ हमें भीड़ से अलग बनाती है।

सखियों, ये तो सच है कि आवाज सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें भावनाएं, अपनापन और यादें भी छुपी होती हैं। आवाज सिर्फ पहचान नहीं, रिश्तों की डोर भी होती है। और कभी कभी किसी रिश्ते में दूरी आ जाए तो एक सच्ची पुकार ही काफी होती है।

सखियों, हर आवाज़ सुनाई दे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बिना बोले भी हमारा मन सब कुछ कह देता है। जब दिल की धड़कन ही आवाज़ बन जाती है तो बिना कहे भी वो दूसरों तक पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ आवाज़ें खामोशी में भी छुपी होती हैं।

सखियो, रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आवाज़ें ही रिश्ते बनाती हैं। कभी कोई आवाज़ मुस्कान दे जाती है तो कभी किसी की याद दिला जाती है, और जब कोई हमारे दिल में गहराई से बस जाए तो हर धड़कन के साथ लगता है कि धड़कन उसे ही पुकार रही है। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा अपने पत्रों के माध्यम से। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए नेहा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संग, अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम महिला संसार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग वसंत मुखारी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग वसंत मुखारी। मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में शासकीय कार्यों में मितव्ययता के उपायों पर अमल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और दिए गए सुझावों के अनुरूप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रीगण सहित निगम मंडल के पदाधिकारी और आम नागरिक अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग न करें। प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन 365 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। सरकार ने इस बार गेहूँ खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन रखा है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। गेहूं खरीदी 23 मई तक जारी रहेगी। और शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।

0: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं, मैं छाया पाठक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902। हमें आपके फोन कॉल्स का हमेशा इंतजार रहता है। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
1: हेलो। हाँ जी,
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ भिंड जिले से।
0: बताएं वहाँ पर क्या हाल चाल है भिंड के?
1: बढ़िया है।
0: आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, क्या सुनना चाहेंगी?
1: आप एक काम करिए, मुझे पिंजरे गीत सुना दीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
0: अच्छा, ये वाला गीत सुनना चाहेंगी ताकि थोड़ी सी ठंडक आपके
1: नहाते में जाना की याद भी आ जाती
0: जी। चलिए,
1: मतलब हमेशा का सदाबहार गीत है।
0: सदाबहार गीत है, हाँ सही बात आपने कही। चलिए,
1: तो मिल जाएगा कि फिल्म का नाम बताना पड़ेगा?
0: नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सदाबहार गीत आपने पसंद किया है,

0: हेलो।
1: हेलो मैडम, सीपरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं?

0: वहाँ पर खेती किसानी।
1: जी मैडम, खेती करते हैं और आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं जी। बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: जी। ये बात आपकी की तुम्हारे फोन करेगी सुने
0: तो
1: और
0: आप फोन अक्सर लगाते रहते हैं क्या?
1: जी मैडम 15-20 दिन में लगाते ही रहते हैं
0: जी
1: जी। और मैडम बढ़िया हो आप।
0: जी सब बढ़िया है। हम
1: सावन भादो फिल्म का सुनवा दीजिए मेरे नैना, सावन भादो।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं छोटू चक्रधारी बोल रहा हूँ, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ
0: बिलासपुर में क्या करते हैं आप?
1: हमारा सिलाई से जुड़ा काम है, इसी में लगे रहते हैं। सिलाई
0: काहे से जुड़ा काम है?
1: सिलाई
0: सिलाई से जुड़ा काम है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जी,
1: यार, घर में ना अंदर में टावर नहीं आता, इसलिए होगा।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आज
0: हाँ,
1: हमको सुना दो, तलाश फिल्म का गाना,
0: कौन सा?
1: नई वाला तलाश, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी।
0: गाना, गाने के बोल तो बताएं।

0: गाने तो है, जिंदगी के सफर में ऐसे तक कुछ गाना है, पाना है क्या और खोना है क्या, जिंदगी के जुए में पाना है क्या और खोना क्या, ऐसे तक था गाना।
1: पाना है क्या, खोना है क्या। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, मैम हम ग्राम जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता पटेल छतरपुर से।
1: जी
0: क्या हाल है छतरपुर के?
1: अच्छे हैं मैम। कभी बादल होते हैं, कभी धूप निकलती है। जी
0: तो आप छतरपुर में ही रहती हैं या आसपास किसी गांव में?
1: नहीं, छतरपुर के पास में महाराजपुर है, उसके पास में है पुर,
0: महाराजपुर के पास है पुर
1: जी ग्रामपुर।
0: ग्राम।

0: और
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, कितना बड़ा गांव है।
1: जी मैम, हमारा गांव वैसे तो गांव ही है हिसाब से, ठीक है, 3-4 हजार की आबादी है जी,
0: अच्छा
1: और खेती किसानी होती है यहाँ पर जी
0: बताएं क्या सुनाएंगी आज।
1: जी मैम, फिल्म का नाम तो याद नहीं मैम, और गाना की बोल है कि सॉरी दीदी अब ना करेंगे हम तो सॉरी।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं राजेश अग्रवाल, राजाराम नगर, देवास से। जी
0: देवास से बोल रहे हैं
1: जी
0: राजेश अग्रवाल जी। पसंद बताएं क्या सुनेंगे।
1: ये आराधना पिक्चर का गीत है, रूप रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर दा की आवाज में है।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी जी।
0: नमस्ते
1: देवीदास
0: कुशवाहा जी, और
1: जी।
0: बताएं अपने बारे में, आपके क्या हाल है?
1: आपसे बात करें पहली बार, कार्यक्रम आपका सुनता हूँ मैं कंटिन्यू।
0: कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार?
1: मध्य प्रदेश का कार्यक्रम मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अपने मन पसंद ही अपनी तरह को।
0: साफ सुनाई देता है आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो चले आज हम क्या सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का गाना सुनना है दीदी जी।
0: कौन सी?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सा?
1: मुस्कान का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं महर्षि दर्शी सिन्हा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: कौन?
1: मैं महर्षि दर्शी सिन्हा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: अभी 6th क्लास में है। हाँ
0: कौन सी क्लास? 5th क्लास में? अच्छा, बहुत छोटे हैं आप तो। फ़ोन आपने लगाया है कि किसी और ने?
1: मेरे बाबा ने लगाया है। हाँ
0: बाबा ने लगाया है। बाबा यानी दादा?
1: हाँ पापा।
0: पापा ने लगाया है। तो आपकी स्कूल की छुट्टियां लग गई,
1: हाँ लगते
0: तो रेडियो सुनते हैं आप?
1: हैं। हाँ सुन लेते हैं कभी कभी।
0: सुन लेते हैं कभी कभी। चलें तो बताएं आज क्या सुनेंगे आप,
1: वो हम साथ साथ पिक्चर का,
0: कौन सा गाना?
1: छोटे भाई होते बड़े भाई।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम, पिंडरी
0: नमस्ते।
1: जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: सुमत कुमार जैन
1: जी, पिंडरी जिला मंडला जी।
0: जी, क्या करते हैं मंडला में आप?
1: मैं रिटायर्ड टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, रिटायर टीचर हैं। अच्छा, कहाँ आप मंडला से ही रिटायर हुए?
1: नहीं, पिंडरी मेरा कस्बा है, छोटी बस्ती है पिंडरी,
0: अच्छा, वहाँ से हुए।
1: व्रती नगरी है पिंडरी, एन समाज की, वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ मैडम।
0: तो आजकल क्या दिनचर्या है आपकी?
1: दिनचर्या बस यही है कि घर नौकर बन गया हूँ घर का।
0: नौकर बन गए
1: सब्जी लाना
0: जी।
1: और घर के घरेलू कार्य को करना। तो तनख्वाह तो घर में कोई देता नहीं है, सरकार की तनख्वाह मिलती थी। श्रीमती कहती है कि मैंने एक दिन बोला कि नौकर बना लिए यार तुम लोगों ने, तो कहती अब घर का काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा भाई तुम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो,
0: और पत्नी इतने सालों से जो कर रही थी घर का काम, तो आप दे रहे थे क्या उनको तनख्वाह?
1: तो अरे वेतन लाके सीधा उन्हीं के हाथ में देता था
0: तो
1: मैडम।
0: वेतन कौन सा, वो अपने पे खर्चा कर रही थी, है ना,
1: अरे
0: परिवार चला रही थी। ऐसे ही आप भी जो कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं उनका। आप घर का काम मिलजुल कर होता है, अच्छी बात है ना कि आप शासन से रिटायर हो गए। वो तो कभी भी रिटायर नहीं होंगी घर के कामों से, तो आपको
1: वो
0: तो
1: तो गृह
0: सहयोग
1: मंत्री
0: करना
1: है
0: चाहिए,
1: मैडम,
0: आपको समय मिला है,
1: वो तो गृह मंत्री है, जो कहेंगे तो वो करना पड़ेगा
0: करिए सहयोग।
1: जी।
0: ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से ही तो परिवार चलता है और प्रेम
1: जी
0: बना रहता है, अपनत्व बना रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए, ये पब्लिक है सब जानती है जी। और मैं अपने छोटे कर्म अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, कि कमला प्रसाद शर्मा सर्रई वाली है, कृपाल पटेल है, मोहम्मद मोहराली है, ये लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन फोन नहीं
0: चलिए
1: लगता, राधे श्याम केवट है, परेशान है। ठीक
0: ठीक है, सुनिए
1: है
0: सब
1: मैडम,
0: लोग ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।

0: आपको तो
1: तो गृह
0: सहयोग करना
1: मंत्री,
0: चाहिए, आपको समय मिला है,
1: वो तो गृह मंत्री है, जो कहेंगे तो वो करना पड़ेगा।
0: करिए सहयोग। ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से ही तो परिवार चलता है और प्रेम बना रहता है, अपनत्व बना रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए, ये पब्लिक है सब जानती है जी। और मैं अपने छोटे कर्म अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, कि कमला प्रसाद शर्मा सर्रई वाली है, कृपाल पटेल है, मोहम्मद मोहराली है, ये लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन फोन नहीं
0: चलिए
1: लगता, राधे श्याम केवट है, परेशान है।
0: ठीक है, सुनिए
1: ठीक है
0: सब
1: मैडम,
0: लोग ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी। चंद्रमान नामदेव बोल रहा है, ग्राम पोस्ट डेहरी जिला छतरापुर से। फोन करेंगी, सुना है कि
0: फोन
1: यार
0: करें, गीत
1: देखो,
0: सुने कार्यक्रम है।
1: धनवान फिल्म का सॉन्ग सुना दीजिए, ते
0: धनवान का कौन सा?
1: आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: इंद्रभान सिंह
1: जी। आपका कार्यक्रम में जुड़ा मैडम, ये लाइव वाला कार्यक्रम है कि रिकॉर्डिंग वाला है?
0: ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है।
1: जी मैडम, अपने पसंद के गीत भी बताता हूँ। फिल्म का नाम है शहनाज सरदार और गीत के बोल भी है शहनाज सरदार, टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग। जी हाँ।

0: करें गीत सुने।
1: ये सर सारी सारी रात तेरी याद सदाए अजी बस शुक्रिया फिल्म है सर 1958 की।
0: आप अपना नाम तो बताएं पहले।
1: मैं गोविंद जलोदिया खाते गाँव।
0: खातेगांव से।
1: हाँ आप कौन बोल रहे?
0: मैं छाया पाठक।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तेरी चक्करी बात हो रही नहीं है
0: सारी सारी रात। क्या
1: तेरी याद सदाए।
0: फिल्म का नाम, इसकी फिल्म का नाम बताएं आप।
1: भैया बंद कर दे जरा ये। हाँ बोलिए।
0: हाँ, फिल्म का नाम क्या है इसका?
1: हाँ ये है मतलब अजी बस शुक्रिया।
0: अजीब बात, शुक्रिया, ये फिल्म का नाम है।
1: हाँ 1958 में पिक्चर आई।
0: चलिए
1: आप
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैडम, राहुल सिंह ठाकुर सुहागपुर एमपी से बोल रहे हैं।
0: सुहागपुर एमपी से।
1: जी
0: अच्छा, क्या करते हैं वहाँ?
1: चाय की दुकान है मैडम जी। जी
0: अच्छा, तो अभी आप दुकान पर बैठे हैं?
1: दुकान पर है
0: अच्छा, आपकी पसंद बताएं आज क्या सुनेंगे?
1: जी, जो है नगीना फिल्म का गाना सुन रहा मैडम जी।
0: कौन सा?
1: मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा जी। बहुत
0: अच्छा, तो
1: दिन से लगाने की कोशिश में मैडम जी, मतलब 1 साल के बाद में आज लगा फोन जी।
0: 1 साल के बाद?
1: नहीं
0: नहीं, मेरी तो आपसे बात हुई है इससे पहले।
1: नहीं हो पाई मैडम जी, नहीं है
0: अच्छा,
1: आज पहली बार बात हो रही, वो भी काम वालों कैसे धोखे से लग गया। हम तो ट्राई कर रहे थे दुकान
0: धोखे से लग गया।
1: जी, हाँ मतलब लगा रहे थे तो लग गया, वैसा कहने का मतलब जी।
0: चलिए, तो आप अपने ग्राहक की छोड़ के फोन लगा रहे थे, अपने ग्राहक की छोड़कर फोन लगा रहे थे, ग्राहकों की सेवा छोड़ करके। तो और कोई भी आपकी दुकान पे काम करता है साथ में?
1: नहीं, दुकान पे तो हम अकेले हैं मैडम
0: तो वहीं पर रेडियो भी सुनते हैं?
1: जी। रेडियो तो मैं बहुत दिन से सुनते हैं मैडम जी, कम से कम आज मेरे को होगा तो 20-25 साल होगा जब से सुन रहे हैं रेडियो जी।
0: चलें, सुने आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में 18 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम होंगे। इनमें 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनमें भोपाल में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, आम सभा संबंधी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देना आवश्यक होगा। भोपाल में सिटी बसों के लिए 26 नए रूट तय किए गए हैं। सबसे लंबा रूट 68.5 किलोमीटर का सीहोर से रातापानी का तय किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे

0: थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर फिल्म का एक गीत। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाराज, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। रूपाखेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। गंगोड़ी जिला उज्जैन से लिखने वाले हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ मालगाम और लोकेंद्र वर्मा। इसी गाने को पसंद किया है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बब्लू वर्मा, कालू वर्मा और उनके कालू भैया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और ये खत आया है, कहाँ से आया है, इसमें इन्होंने लिखा सिंहपुर बाड़ा से लिखा है राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने ये गाना सुनना चाहा है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शांति नगर उज्जैन से लिखने वाले हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस पलक, अफशां और आयान दुलावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को सुनना चाहे। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज़ में। गाने को पसंद करने वाले हैं नाज मंजिल, मेहोल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आरजू से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गाने को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली श्वेता सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नमक हलाल से, आवाज़ आशा भोसले की है, अंजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राव, उषा राव, अमित कुमार राव, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जानवर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जबूरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के सदस्य। अगला गाना इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छोटी बलिया करजन मुंबई से, लिखने वाले हैं अहमद भाई फूल वाले, इकबाल भाई फूल वाले, नूरेशा बेगम फूल वाले और कॉपस हैदा नई दिल्ली से, लिखने वाले हैं नसरीन आज़ाद, आमना असमा परी और इमरान अहमद और दूसरे साथी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से, लिखने वाले हैं रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर, सरोज चौक अमरावती से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा बेगम, हादिया खान, असमा सालिया और शोएब खान। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जावाज़ से, आवाज़ें हैं मनहर उदास और साधना सरगम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट से, लिखने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया, और ये पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से लिखने वाले मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गुड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये खत आया है, इसमें लिखाई थोड़ी साफ नहीं है, जितने नाम मुझे समझ में आ रहे हैं, अनिल, नेहा, सीमा, सबीहा, फजल, सुषमा और बाकी के नाम मुझे इसमें समझ में पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये पत्र आया है गुमाश्ता नगर स्कीम 71 से। तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी आप ख़त लिखें तो थोड़ा संभल कर शब्दों को थोड़ा ऐसा लिखें कि हमें पढ़ने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं और ये समय है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी सुनने के। तो लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 13वीं यानी अंतिम कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आत्मा राम का नाट्य रूपांतरण। वैदिक ग्राम में महादेव सुनार एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वो अपनी अंगीठी के सामने बैठा खटखट किया करता। आस पड़ोस के लोग इस आवाज के अभ्यस्त हो चुके थे। महादेव के परिवार में पुत्र, बहुएं, पौत्र सभी लोग थे, परंतु उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। ऐसा उसके व्यावसायिक जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। वो भी तनावग्रस्त ही था। काम तो सबसे खरा करता था, फिर भी आए दिन लोगों की खरी खोटी सुनता था। ले देकर उसका अगर कोई था तो वो था एक तोता। उससे वो बड़ा ही प्रेम करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो उसका पिंजरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता था।
1: अजी उठो जी, भोर हो गई है। अरे उठो, महादेव सुनार का तालाब की ओर जाने का समय हो गया है।
2: अरे भगवान, अंधेरे में इसका जर्जर शरीर और पोपले मुंह को क्यों दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है पिशाच राज के दर्शन हो गए। सारा दिन खटपट और सुबह को ये सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता।
1: इतना बेईमान है ना, हर गहने में अपना टांका रखता है।
3: पता नहीं अब किस मोह माया में अटका है।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
5: मामा भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
1: मार कर टांगे तोड़ दूंगी, चल हट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
5: माँ बहुत भूख लगी है, दूध ही दे दो।
1: ठहर जा, मेरे दो हाथ हैं, हाथ पांव मत फुला मेरे, चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर।
2: अरे सुनती हो, मेरा गमछा कहाँ है?
1: तुम्हें कोई चीज मिली है आज तक? जो मिलेगी वही सूख रहा है रस्सी पर।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय बन गई क्या?
6: बाऊजी अभी देर लगेगी।
1: अब बच्चों को कुछ खाने को दूं या इनकी चाय बनाऊं? इन्हें भी सुबह से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं सोचता।
4: चलो ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत हो तो दुकान पर ही कुछ खाने को भेज देना।
7: महादेव जी, परसों अपनी औरत के कान का बुंदा ठीक होने के लिए दिया था, हो गया क्या?
4: हाँ हाँ हो गया भाई, यहीं तो रखा था। ये लो।
7: वजन तो बराबर है ना?
4: अरे बिल्कुल बराबर है। लो सामने है, देख लो, तुम्हारी ही आंखों में फेर है।
7: मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे पास आया। लो अपने पैसे।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त।

0: अरे बहू, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक।
1: कैसी बहुएं हैं, सुबह के समय ससुर को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं है। अरे गलती इनकी नहीं है, अरे मेरे बेटे ही इनके गुलाम हैं, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। ये हालत तो जब है जब मैं ही कमा कर देता हूं। निकम्मी औलाद, कुछ कमाते थमाते है नहीं, और रात को दो छटाक पीकर चैन भी नसीब नहीं होने देते। सारा दिन मेरे सिर पर नाचती है, उन्हें अलग संभालो।
2: हाँ जी बाबू महादेव जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
1: भाई, तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। ये लो, देखो।
2: ये क्या किया, इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
1: तो अच्छी बात है।

0: हाँ जी बाबू महादेव जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
1: भाई तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। ये लो देखो।
0: ये क्या किया? इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
1: तो अच्छी बात है, इसे गला कर तुम्हारी पहले जैसी बना दूंगा, कल ले जाना।
0: हाँ हाँ समझे, लो पकड़ो अपने पैसे, बड़ा आया ठग कहीं का।
1: अरे बहू, तो पहर होने को आई? अरे कुछ खाने को मिलेगा या आज उपवास ही रख लूं? अब आधा दिन तो हो ही गया है। अरे कहाँ गए सब? अरे अरे मेरे प्यारे तोते, एक तू ही मेरा है, सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
2: हर हर महादेव। क्या हाल है बच्चा?
1: घोर कलयुग है, घोर कलयुग है महाराज। आओ बैठो।
2: अच्छा।
1: अरे चुन्नू, ओ चुन्नू, अरे कोई है क्या? देखो साधु बाबा बैठे हैं ड्योढ़ी पर। अरे कुछ खाने को भेज दो, सुबह से शाम हो गई। एक प्याला चाय बस तालाब पर पंडित जी के साथ पी थी, पूरा दिन गुजर गया।
3: ये लो पकड़ो, घर में एक काम है, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, लत्ते धो, औलाद संभालो, सब धंधे पे लो और इनकी चेचे भी सुनो।
1: ए दाता, ये तूने क्या घृणित जीवन दिया है। वक्त पर अन्न तो जानवर का भी हक है, इतना करता हूं इनके लिए, ये सब क्या मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? लानत है ऐसे भोजन पर, मेरी गैरत मुझे धिक्कार रही है, नहीं करना मुझे भोजन। लो बेटा मिट्ठू, मेरे प्यारे तोते, तुम तो हरी हरी मिर्च खाओ, पानी, हाँ लो पानी भी डाल देता हूँ, लो पी लो।
4: महादेव जी, इतनी रात गए यहाँ घर के बाहर बैठे हैं, ठंड बहुत है, अंदर चले जाओ।
1: अरे घर की कलेशों से तो मैं और मेरा मिट्ठू बाहर ही भले। सतगुरु दत्त शिव दत्ता दा, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। राम राम राम राम राम, जय सिया राम जय सिया राम, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। चलो भाई मिट्ठू को उठाता हूँ। अरे भाई मिट्ठू, भोर हो गई। मिट्ठू मिट्ठू, अरे पिंजरा खुला है, मिट्ठू कहाँ उड़ गया? मिट्ठू मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा, कहाँ चला गया मिट्ठू? क्या करूं, किससे पूछूं? यहां तो कोई दिखता भी नहीं। हे भगवान, ये किसकी बदमाशी है, मेरा मिट्ठू? अरे अरे बहू बहू, अरे मोहन, चुन्नू। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना जाने कहां छुप गया, ना जाने कहां छुप गया। सतगुरु सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, शिव दत्त दाता। अरे वो रहा, हाँ वो रहा। अरे अब तो आजा मेरे मिट्ठू, आजा आजा आजा आजा बेटा आजा। अरे कहाँ जाके बैठा है? अरे पेड़ पर मत बैठ, आजा आजा आजा आजा आजा पिंजरे में, आजा आजा आजा आजा। अब पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा इसे। अरे अरे ये तो फिर उड़ गया। सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
0: अरे देखो तो महादेव को, इस बुढ़ापे में तोते से कितना मोह लगाए बैठा है।

0: अरे तोता है, उड़ गया तो उड़ गया।
1: अरे बुढ़ऊ, ये तोता नहीं उसकी आत्मा है। अरे जन्म मरण का साथी है, देखते नहीं उसकी क्या हालत है।
2: जन्म मरण का साथी, देखते नहीं उसकी क्या हालत है। घर में इतने नाती पोते, बेटे बहुएं होते हुए भी न समय पर खाना है न चैन की।
3: खेतों से फुर्सत मिल गई जो महादेव का किस्सा लेकर बैठे हो। भागो यहाँ से, क्या चिल्लपो मचा रखी है।
4: सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ये मिट्ठू पकड़ में नहीं आया। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे मिट्ठू, अब तो आ जा। ओ शिवदत्त, आ जा। क्यों भैया, ये आम के पेड़ की फुनगी पर बैठे क्या बतिया रहे हो। आ जा मेरे भाई, पिंजरा खाली है। अरे अरे उड़ क्यों रहा है। अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, मुझे नहीं पहचानते क्या। अच्छा लो, मैं एक काम करता हूं, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं। हाँ, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं, तुम चुपके से पिंजड़े में आ जाना। हाँ, लो मैं पेड़ की ओट में आ गया। ओ शिव दत्त दाता, सुबह से ये समय आ गया। अरे ना खाने का ना पीने का, तलवों से आग निकल रही है और सिर में चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता।
3: मैंने पकड़ लिया।
4: ये तो फिर उड़ गया।
5: शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता तो कभी पिंजरे के द्वार पर आ बैठता, अपनी दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वो जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। तोता ही वो प्राणी था जो महादेव को चेतन रखता था। उसका हाथ से निकलना मानो जीवन ही लुप्त हो गया हो। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा बीच बीच में झपकियां ले लेता था और क्षण भर में चौंक कर आंखें खोल देता और इस गहन अंधकार में महादेव की ध्वनि सुनाई देती, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजरी कि अचानक एक आहट हुई। देखा दूर वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है। देखा कई आदमी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे उत्तेजित कर दिया और वो ऊंची ध्वनि में बोला, सद्गुरु दाता शिव दत्त दाता। उसकी आवाज ने इस गहन सन्नाटे में बंदूक की गोली जैसी आहट का काम किया। सारे चिलमबाज भाग खड़े हुए।
4: ये कौन है, इतनी रात गए। अब
3: ठहरो ठहरो।
4: अरे लगता है ये सब चोर हैं।
3: अरे चोर, अरे पकड़ो।
4: ये दीपक जल रहा है यहीं पर तो ये। अरे ये कलसा कैसा रखा है। अरे ये तो अशर्फियां। क्या करूं, एक काम करता हूं, पहले ये दीपक बुझा दूं, कलसा उठाता हूं,

0: Harry. अब इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। कहीं चोर वापस आ गए और मुझसे मोहरे छीन ली तो नहीं, क्या करूं मैं। हाँ, ऐसा करता हूँ, गड्ढा खोद कर इन मोहरों को यहाँ दबा देता हूँ। हाँ, और कुछ अपने साथ कमर में बांध लेता हूँ। इन मोहरों से अब पक्का मकान बनवाऊंगा, सर्राफे की एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा, सब रिश्तेदार मेरे तलवे चाटेंगे। नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, ब्रह्म भोज करवाऊंगा, शिवालय और कुआं भी बनवाऊंगा। अरे पर लोग तो सुधार लूं कम से कम, रोज कथा सुनूंगा और किसी भी साधु संत को अपने दर से भूखा नहीं जाने दूंगा। लेकिन कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा कैसे। हाँ, भागूं। कैसे कल्पना कर रहा था मैं। अरे ओहापू में सुबह हो गई। अरे मिट्ठू कहाँ है? सतगुरु शिव दत्ता दा राम के चरण में चित्त लागा, राम के चरण में चित्त लागा। अरे मिट्ठू, अरे मेरे तोते, आओ आत्मा राम। तुमने कष्ट तो बहुत दिया, राम के चरण में चित्त लागा। मिठू हमारे दिन बदल गए बेटा, अब तेरा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा तेरा पिंजरा। चलो घर चलते हैं। इस कलसे को नांद में छिपाकर कोयले से ढक देता हूँ और कोठरी में रख देता हूँ। सुबह सबसे पहले अब मैं पुरोहित से मिलूंगा। ये ठीक है।
1: अरे पुरोहित जी,
2: कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। अरे जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता।
1: अरे पाए लागन पंडित जी।
2: अरे ये मंगल मूर्ति कहाँ से यहाँ पहुंची? क्या है जी, क्या बात है, क्या कहते हो? अरे जानते नहीं है, सब आए हम पूजा कर रहे हैं।
1: महाराज, आज मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा है।
2: महादेव के द्वार कथा है? ये तो बढ़िया साधारण घटना है। अरे ये तो उतनी ही विश्वसनीय है जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। आज क्या है
1: जी? कुछ नहीं पुरोहित जी, बस यूं ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं।
3: सुनो, गांव वालों सुनो, महादेव सुनार के घर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है। सभी आमंत्रित हैं, कथा के बाद भोजन की भी व्यवस्था है। सुनो, गांव वालों सुनो,
4: अरे महादेव के घर सत्यनारायण की कथा और ऊपर से भोज।
5: अरे पूरे गांव को बुलाया है
6: भाई, आज रेत में दूब कैसे उगी?
5: ये तो वही बात हो गई कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल रहा।

0: भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी है, कितने खरे का खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके खरे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब भी जी चाहे आप आए और अपना हिस्सा चुकता कर ले, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
1: हम कहते नहीं थे
2: भैया, क्या खाकर मरेगा, कहां से चुकता करेगा, हजारों का जोड़ बन जाएगा।
3: अरे महादेव जी, जो जीते हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो परलोक सिधार गए उनकी वसूली कौन करेगा?
0: अरे उनके घर वाले तो होंगे ना।
4: अरे भाई, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, बीत गई सो बात गई, अब किसे याद है क्या क्या वसूलना।
2: अरे भैया, सत्यनारायण की पूजा अर्चना और भोग चल रहा है, यही क्या कम है। महादेव, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनवाने के लिए तुम्हें सोना दिया था?
0: हाँ।
2: और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, याद है या नहीं?
0: हाँ हाँ पुरोहित जी, अच्छी तरह से याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा?
2: यही कोई 50 रुपए।
0: तो ये लीजिए 2 मोहरे।
4: ये तो सरासर बेईमानी हुई, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा।
2: बेचारे से पैसे ऐंठ लिए,
4: पूरे ठग ठग। हाँ जी, नाम के ही पंडित जी हैं, नारायण का भी डर नहीं, नियत ऐसी खराब। राम राम राम राम राम।
0: मालूम होता है आप सभी लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें।
1: देव जी ने यार
0: उद्धार करें।
1: इन्हें सोचने वाली बात है।
5: माता बंधु त्रिभुवनेश्वर को नमस्कार। रावे
6: एक माह बीत गया, लेनदारी के नाम पर महादेव से मिलने कोई नहीं आया। महादेव को चोरों के भय से रात को नींद नहीं आती थी, अब वो कोई काम नहीं करता था। रहा सहा नशे का चस्का भी जाता रहा। उसके द्वार पर जो भी साधु भोगी आते, उनके सत्कार में महादेव का दिन गुजरने लगा। दूर दूर तक आसपास के गांवों में महादेव की कीर्ति फैलने लगी। 1 माह बीत गया, एक भी आदमी इस एक काम में हिसाब करने या लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आप वेदी ग्राम जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है, वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। तालाब की मछलियां कोई नहीं पकड़ता। समीप ही किनारे पर एक विशाल समाधि है। समाधि पर आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता वो रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। लोग कहते हैं

0: आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे से आवाज आती है।
1: सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं यानी अंतिम कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, अशोक शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश के 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। 3 मई को ही नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है। अब पुनः परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बज चुके हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
1: सखियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। इस समय मैं धम्म मित्रा आपके साथ हूँ। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

सखियों शुरू हो चुकी हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां। बच्चों की ही क्यों, हमारी भी। रोज़ रोज़ का एक सा रूटीन, सुबह सुबह टिफ़िन बनाना, बॉटल, स्कूल ड्रेस की तैयारी से कुछ दिन की राहत। मुझे लगता है यही बेस्ट टाइम है वो काम करने का जिन्हें आप काफ़ी समय से प्लान कर रही थी और हो नहीं पा रहे थे। ये जो कुछ समय मिला है बच्चों के साथ साथ आपको भी, उसे आप बेहतर यूज़ करें और बनाएं यादगार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सखियों टूर प्लान करें, कैंपिंग करें पूरी प्लानिंग के साथ, दूरबीन साथ लेकर जाएं, प्रकृति के बीच पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षियों को देखें, उनकी आवाज़ को सुनें, पहचानें, महसूस करें। पेड़ पौधों को पहचान कर बच्चों को बताएं। सखियों प्रकृति के साथ बिताए पल हमें प्रकृति से जोड़े रखते हैं। इस दौरान बस ये याद रखें कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ना पेड़ पौधों को तोड़ें, ना ही उन पर कुछ लिखें। सखियों कहीं दूर नहीं जाना है तो एक शॉर्ट रोड ट्रिप ही प्लान करें। सब साथ में हो, स्नैक्स हो, म्यूजिक हो और बाहर सुंदर नज़ारे। सखियों ये आपस में जुड़ाव का एक बेहतर तरीका है। पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, दोस्तों को भी शामिल करें उसमें। सच मानिए, जितने लोग उतना मज़ा। सखियों बच्चों को प्लानिंग के साथ साथ तैयारी में भी शामिल करें। ऐसा करने से उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी जागता है। सखियों जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं खुशी तो उसी में मिलती है, इसलिए कुछ क्रिएटिव करें वो भी अपने मन का। सखियों कुछ भी कह लो पर बच्चों को छुट्टी का असली मज़ा तो दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ बिताए पलों में ही मिलता है। उनका प्यार दुलार, दादी नानी के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन, उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, किस्से कहानियाँ हमारे जीवन में अपार खुशियाँ भर देते हैं। सच कहूँ तो ये पल दुर्लभ और अनमोल होते हैं, क्यों ना इन छुट्टियों में इन पलों को संजो लें और यादगार बना लें।

0: जीवन में सभी महिलाएं सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। इसी संदर्भ में हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियां और सावधानियां। इस भेंटवार्ता में एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में, जहां आज हमारा विषय है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा समाज की प्रगति का मूल आधार है, क्योंकि सुरक्षित नारी ही परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीएस विदिता जी, जो ग्वालियर जिले में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं। उनके बेटी के पेटी जैसे अनूठे प्रयोगों से प्रेरित होकर ये साक्षात्कार ग्वालियर जिले में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों, रणनीतियों और जागरूकता पर केंद्रित है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल, हमारा जो शहर है ग्वालियर, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं और इसको लेकर आपके विभाग की क्या रणनीतियाँ हैं?
2: देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, बट यदि हम आज की इस युग की बात करें, जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, जहाँ पर सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन साथ ही विडंबना ये भी है कि शायद जो काम की चीज़ें हैं वो जनता तक, महिलाओं तक खासकर नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे युग में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अवेयरनेस की है। अवेयरनेस इन रिलेशन टू व्हाट लॉज आर देयर रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, कैसे महिलाएं किसी भी स्थिति में किस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करें, किस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करें, और यदि वो नहीं कर पा रही हैं तो अपने लेवल पर वो किसी भी सिचुएशन से कैसे डील कर सकती हैं। आई फील कि दैट इज़ द बिगेस्ट लैक्यूना जो आज के समय में किसी भी शहर में है। यदि हम मेट्रो सिटीज़ की भी बात करें, यदि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की भी बात करें, तो ये चैलेंज आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि हम पुलिस विभाग के प्रयोगों की बात करें, हमारे कार्यक्रमों की बात करें, तो आई वुड लाइक टू टेल कि एक जो हमारी स्पेशल ब्रांच रहती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसमें फोकस जो हमारा रहता है, पुलिस विभाग का रहता है, वो इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि हम कम्युनिटी के अलग अलग वर्गों के बीच में जाएं। साथ ही जो महिला सुरक्षा विंग है उसका फोकस स्पेसिफिकली विमेन और जितनी भी हमारी बालिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाली बच्चियाँ हैं, उन पर रहता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग और जो हमारा क्राइम अगेंस्ट वेमेन विंग है, वो दोनों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, समय समय पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, मुस्कान अभियान चलाया जाता है, साथ ही मैं हूँ अभिमन्यु अभियान चलाया जाता है, साइबर स्पेस की सुरक्षा को लेकर, कैसे खुद को साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रखें उसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। तो समय समय पर PHQ लेवल से भी अभियान चलाए जाते हैं, जिला स्तर पर हम लोग भी हमारे जिले की क्या समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग अभियान चलाते हैं। जैसा अभी आपने बताया, बेटी की पेटी भी हमारा एक ऐसा ही अभियान था, जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर महिलाओं बच्चियों का ज़्यादा आना जाना रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स का क्लस्टर है, वहाँ पर हम एक बेटी की पेटी लगाते हैं, जिसमें जो भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ खासकर, वो अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकती हैं। क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक हिचक रहती है पुलिस तक जाने में, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डर भी रहता है कि हमारी बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, क्या हमारी बात सुनी जाएगी, क्या हमें जज तो नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों से डील करने के लिए हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसमें आप अपनी एनोनिमस शिकायतें भी डाल सकते हैं, और नियमित समय पर इन पेटियों को पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा ही खोला जाता है और उन पर फिर कार्यवाही की जाती है।
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपके विभाग का। ये अवेयरनेस की बात आप अभी कर रहे थे, सोशल मीडिया एक टूल है, आज के समय में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए?
2: सबसे पहले तो वेन एवर वी गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस, तो हम सभी को यही बताते हैं कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट एंड हाउ मच वी यूज़ इट। बहुत बारी, जैसे यदि हम पढ़ाई की ही बात करें, तो इतनी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन हैं, इतने सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन हैं, कि जो टायर 3 सिटीज़ हैं, जो बहुत छोटी छोटी शहर हैं, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ने के लिए जब यूट्यूब का, इंटरनेट का यूज़ करने लगते हैं, तो दे सरपास देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम पॉजिटिवली सोशल मीडिया को यूज़ करने लगें, थोड़ा सा हम केयरफुली अपना माइंड अप्लाई करते हुए यूज़ करें, तो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर आर ओन डेवलपमेंट। साथ ही सोशल मीडिया का

0: यूज़ पुलिस कैसे करती है? यदि इस बारे में हम बात करें तो आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज वाले बच्चे हों या फिर हाउस वाइफ्स हों, सबके पास मोबाइल है और सबकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सब यूट्यूब पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, सब इंस्टाग्राम्स पर हैं। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा जो हमारे पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, समय समय पर हम उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और रील्स के माध्यम से भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, छोटी सी वीडियोस बनाकर भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये शेयर की जाती है। जैसे अभी नए कानून आए हैं, IPC CRPC को रिप्लेस किया गया है BNS और BNSS के द्वारा, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजंस आए हैं, महिलाओं के लिए ऐसी और क्या नई चीज़ें आई हैं, तो उन सब के बारे में भी छोटे छोटे फोटोज़, वीडियोज़, पोस्टर्स बना के इन पर डाले जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो यदि हम अपने इन छोटे से प्रयासों के माध्यम से थोड़े से जनता को भी यदि हम अवेयर कर पाएँ, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माइंडफुल यूज़ सोशल मीडिया का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। विदिता जी, अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विषय में। जो सुरक्षा का संकट है वो वहाँ पर भी होता है इक्वली, इसको लेकर पंचायत स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्या?
0: ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं शासन की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से, वो शहरी क्षेत्र तक ही लिमिट हो जाते हैं। इस बारे में जो हमारा सोचना है वो ये है कि समस्याएं तो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी आती हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो शहरी क्षेत्रों से बहुत कम है। तो ऐसे में हमारे द्वारा लगातार जन संवाद किया जाता है, जहाँ पर हमारे थाना प्रभारी, हमारी महिला पुलिस अधिकारी समय समय पर किसी न किसी गाँव में जाती हैं, वहाँ पर जन संवाद का आयोजन करती हैं, जिसमें हम पंचायत के सदस्यों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सभी आए, और उनसे ये जो निरंतर समय पर, निरंतर अंतराल पर जो ये संवाद रहते हैं, उसमें हम उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो अभी किसी ऐसी समस्या को फेस कर रही हैं, क्या ऐसे कोई गुंडे बदमाश हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं आसपास, क्या कोई अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिससे वो या उनके परिवार वाले पीड़ित हैं। साथ ही जो पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी देते हैं, जो नए नए प्रावधान आते हैं ऐसे जन संवाद में हम उनकी जानकारी भी उन्हें देते हैं। तो ये बिल्कुल पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण अंचल में जाके, जो भी हमारे गांव रहते हैं उनकी पंचायत में जाके हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसके जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिल्कुल आखिरी उस व्यक्ति तक, आखिरी उस महिला तक पहुँच सकें जिसको पुलिस स्टेशन के नाम सुनकर ही जिसे डर लगता है, जो शायद कभी आए भी नहीं होंगे, जिन्हें शायद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, और शायद वो कभी अपने जीवन काल में आएंगे भी नहीं पुलिस थाने, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो दूर दराज क्षेत्र में निवासरत हैं।
1: तो विदिता जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको पता है एक हेल्पलाइन नंबर है, सब उसको जानते हैं, लेकिन जब कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा महसूस होता है कि कोई इस तरह का संकट है, तो आप ये भूल ही जाते हैं कि कहीं आपने सेव किया है वो हेल्पलाइन नंबर और प्रेस करना है उसको। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में हमें हमारी युवतियों को या जो भी महिलाएं हैं समाज में, प्रशिक्षण और सेल्फ डिफेंस का कोई प्रोग्राम जो उनको सिखाया जाए तो वो चीज़ें शायद ज़्यादा काम आएंगी। ऐसा कोई सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम या प्रशिक्षण की योजना है आपके विभाग में?
0: पुलिस विभाग का PHQ स्तर से एक सृजन कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम NGOs के साथ टाई अप करते हैं, और फिर ये NGOs अलग अलग क्षेत्र में जाकर ऐसी कम्युनिटीज़ को चुनते हैं जहाँ पर स्कूल नहीं भेजा जाता है बच्चों को, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर शासन के कार्यक्रमों के प्रति या फिर पुलिस के कार्यक्रमों के प्रति कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अभी हाल ही में हमारे द्वारा माधोगंज क्षेत्र में एक NGO के साथ मिलकर एक ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम ऐसे बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों की हम 15-20 दिन की क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम उनको आउटडोर क्लासेस भी लेते हैं, इंडोर क्लासेस भी लेते हैं। आउटडोर क्लासेस में उनको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, इंडोर क्लासेस में उनको थोड़ा बहुत जो भी हमारे नए लॉज हैं उनकी जानकारी दी जाती है, और अलग अलग विषयों पर भी उनकी क्लासेस ली जाती हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सभी जिलों में हो रहे हैं और निरंतर अंतराल पर हो रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ को चुनकर इसमें भागीदार बनाया जाता है।
1: अच्छा, लॉस तो विदिता जी पहले से बहुत ज़्यादा हैं।

0: नहीं, हमारे पास एनफ है। इम्प्लीकेशन को लेके आपको भी लगता है सशक्त होना चाहिए हमारे सिस्टम को?
1: लॉज हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, बट आई फील कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बारी हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है क्या वो अपराध है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जैसे स्टॉकिंग की यदि बात करें, तो यदि हम आज के बच्चों से पूछेंगे कि कितनी लड़कियों को अवांछित मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, हम अपना इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, हमें भी हजारों में मैसेजेस मिलेंगे। वो भी डिजिटल स्टॉकिंग है। यदि कोई बार बार हमें मैसेज कर रहा है, हमारे मना करने के बाद भी मैसेज कर रहा है, वो भी स्टॉकिंग है और वो भी लो के परव्यू के अंडर आता है। तो आई फील कि अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि उसके साथ जो घटना हुई है वो अपराध की कैटेगरी में है कि नहीं है, तब तक वो पुलिस के पास नहीं आएगा, और जब तक पुलिस को उस चीज़ की जानकारी नहीं लगेगी, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो आई फील कि अवेयरनेस ही वो टूल है जिसके जरिए हम अपनी जनता को सबसे ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, दोनों ही पक्ष, आपको संदेश देना चाहती हैं इनको महिलाओं की सुरक्षा के विषय में?
1: जो भी श्रोता आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को यही बताना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने चाहिए हमें, और बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। और केवल सपने देखने नहीं हैं, जितने बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी है। और ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, ग्वालियर पुलिस आपको दिला रही है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको एक सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, वो ग्वालियर पुलिस आपको देगी। पूरा प्रयासरत है ग्वालियर पुलिस कि आपको एक सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें आप मेहनत कर सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।
0: जी, जाहिर सी बात है, आपके संदेश को सुनकर जो हमारे श्रोतागण हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनको आलंबन मिल रहा होगा। लेकिन सैड ट्रुथ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है और वो नियमों और कानूनों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि ये अवसर उनको भी एक संदेश देने का है, अगर आप देना चाहें।
1: देखिए, मदद करना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति को, उस फरियादी को, उस आवेदिका को, आवेदक को हम संतुष्ट कर भेजें। उसके अलावा भी सुओ मोटो, कई बारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती हैं कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं या ऐसी घटनाएँ कारित कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में उनका भय बना हुआ है। आप लोग भी निश्चिंत रहिए, अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों पुलिस आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आपके जो भी कर्म हैं उनकी जो भी लीगल सज़ा है वो आपको ज़रूर मिलेगी।
0: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और अब इसी के साथ हम साक्षात्कार को विराम देंगे। आपने इतने संवेदनशील विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सखियों, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियाँ और सावधानियाँ। एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। सखियों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे, आर के नारायण। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई है। नारायण जी ने अपने जीवन काल में 2000 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ व नाटक लिखे। उनकी लेखन शैली ने भारतीय जीवन के सार को बड़ी ही सरलता और गहराई से छुआ था। उनका पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक ने स्वामीनाथन नामक चरित्र का परिचय कराया, जो मालगुड़ी नामक काल्पनिक कस्बे का एक शरारती और सहज लड़का था। इस उपन्यास के सफलता के बाद उन्होंने कई अन्य रचनाएं लिखी, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द गाइड और द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी शामिल है, जिस पर धारावाहिक भी बना था और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। उनकी लेखन शैली, जो सरलता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से परिपूर्ण थी, भारत और विदेश दोनों जगह पाठकों ने उन्हें खूब सराहा। मालगुड़ी डेज, लघु कथाओं का एक संग्रह जो मालगुड़ी में जीवन की सादगी और सुंदरता को दर्शाता है। इसमें प्रेम, विरह और मानवीय संबंधों को भी शामिल किया गया। आर के नारायण जी की प्रत्येक कहानी भारतीय संस्कृति और मानव स्वभाव के अनूठे पहलू को दर्शाती है। नारायण की असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों को चित्रित करने की क्षमता ने उनके लेखन को अत्यंत प्रासंगिक बनाया। नारायण जी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव अतुलनीय है। उन्हें अंग्रेजी में आधुनिक

भारतीय लेखन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनकी अंतिम रचना दादी की कहानी 1992 में 80 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई, जो कहानी कहने के प्रति उनके अटूट जुनून को दर्शाती है। अपने अंतिम वर्षों में भी नारायण जी भारतीय साहित्य में एक प्रिय व्यक्तित्व बने रहे। सखियों, आर के नारायण को साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1964 में पद्म भूषण, सन 2000 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में A.C. बेसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर के नारायण जी का निधन 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

सखियों, गर्मियां आते ही हम आम, तरबूज, खरबूज को खूब मज़े से खाते हैं, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ताजगी भी महसूस कराते हैं। पर सखियों, गर्मियों में एक और फल लाभकारी है, वो है बेल। सखियों, इसके गूदे से एक ताजगी भरा स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है। सखियों, इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम व विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण बेल का शरबत धमनियों के कार्य को बेहतर बनाता है और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार

व्यवहार करता है। सखियों, बेल का रस पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन पाचक टॉनिक है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसका रस भूख को बढ़ाता है, थकान दूर करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। सखियों, हीट स्ट्रोक में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए सखियों, हो सके तो बेल का प्रयोग इन गर्मियों में ज़रूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें, ताजगी भरा महसूस करें। इसी के साथ अपनी सखी धम्ममित्रा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत। पहले चौकड़िया, फिर गारी, इसके साथ दादरा। तो सुनते हैं प्रमोद कुमार जोशी को।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दात्रा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है और जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए भजन।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: कवि हेमंत देवलेकर,
5: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
6: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हीरा पन्ना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

और कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, नीरज का गीत और संगीत SD वर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अडिग संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री

मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12 के चारों शावकों कल सुबह एक मांद के पास मृत और शतविशत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनो के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रुपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में ये भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का ये मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायक

0: का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित

0: आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में

0: प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। पहली फरमाइश है पप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज़ में गाया हुआ प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत की। गीत इंदिवर का और संगीत पप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

रामपुर का लक्ष्मण, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और राहुल देववर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ। इस गीत की फरमाइश भेजी है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सब ने पसंद किया है प्रेम गीत फिल्म का ये नगमा, आवाज़ जगजीत सिंह की, गीत इंदिवर का और संगीत जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बीवी स्वाति माखीजा, छुटकी शरद डुडवानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राशेश, साथी राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है काश फिल्म का ये गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की, फारूक कैसर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसार, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों, निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और 7:15। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:00। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। 10:00 सुनिएगा वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे

पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दादरा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सुगम संगीत में अब सुनिए स्वाति पाराशर के गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

स्वाति पाराशर के गाय इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: DTS पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत राम लखन फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद अजीज़, अनुराधा नितिन मुकेश की, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

प्रेम बंधन। लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: Hey man, you dig this sort of music, eh? You like it?

थोड़ी सी बेवफाई, लीजिए इस फिल्म का गीत अनवार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में, गुलजार के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: फिर आया
1: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
2: यह डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुले हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट DigiLocker उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी अगले महीने आयोजित होने वाले सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही राज्य के सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगी। सुश्री भूरिया आज महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चाइल्ड बजटिंग इन मध्य प्रदेश विषयक परीक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: DTH पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत अब हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जादूगर को सलाम का 13वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 13वीं यानी अंतिम कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आत्मा राम का नाट्य रूपांतरण। वैदिक ग्राम में महादेव सुनार एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वो अपनी अंगीठी के सामने बैठा खटखट किया करता। आस पड़ोस के लोग इस आवाज के अभ्यस्त हो चुके थे। महादेव के परिवार में पुत्र, बहुएं, पौत्र सभी लोग थे, परंतु उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। ऐसा उसके व्यावसायिक जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। वो भी तनावग्रस्त ही था। काम तो सबसे खरा करता था, फिर भी आए दिन लोगों की खरी खोटी सुनता था। ले देकर उसका अगर कोई था तो वो था एक तोता। उससे वो बड़ा ही प्रेम करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो उसका पिंजरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता था।
1: अजी उठो जी, भोर हो गई है। अरे उठो, महादेव सुनार का तालाब की ओर जाने का समय हो गया है।
2: अरे भगवान,

0: घेरे में इसका जर्जर शरीर और पोपले मुंह को क्यों दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है पिशाच राज के दर्शन हो गए। सारा दिन खटपट और सुबह को ये सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता
1: इतना बेईमान है ना, हर गहने में अपना टांका रखता है।
2: पता नहीं अब किस मोह माया में अटका है।
3: सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
4: माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
1: मार कर टांगे तोड़ दूंगी, चल हट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
4: माँ बहुत भूख लगी है, दूध ही दे दो।
1: ठहर जा, मेरे दो हाथ हैं, हाथ पाँव मत फुला मेरे, चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर।
0: अरे सुनती हो, मेरा गमछा कहाँ है?
1: तुम्हें कोई चीज मिली है आज तक? जो अब मिलेगी वही सूख रहा है रस्सी पर।
3: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय बन गई क्या?
5: बाऊजी अभी देर लगेगी।
1: अब बच्चों को कुछ खाने को दूं या इनकी चाय बनाऊं? इन्हें भी सुबह से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं सोचता।
3: चलो ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत हो तो दुकान पर ही कुछ खाने को भेज देना।
6: महादेव जी, परसों अपनी औरत के कान का बुंदा ठीक होने के लिए दिया था, हो गया क्या?
3: हाँ हाँ हो गया भाई, यहीं तो रखा था। ये लो।
6: वजन तो बराबर है ना?
3: अरे बिल्कुल बराबर है। लो सामने है, देख लो, तुम्हारी ही आंखों में फेर है।
6: मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे पास आया। लो अपने पैसे।
3: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक? कैसी बहुएं हैं, सुबह के समय ससुर को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं है। अरे गलती इनकी नहीं है, अरे मेरे बेटे ही इनके गुलाम हैं, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। ये हालत तो जब है जब मैं ही कमा कर देता हूं। निकम्मी औलाद, कुछ कमाते थमाते है नहीं, और रात को दो छटाक पीकर चैन भी नसीब नहीं होने देते। सारा दिन मेरे सिर पर नाचती है, उन्हें अलग संभालो।
0: हाँ जी बाबू, महादेव जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
3: भाई तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। ये लो, देखो।
0: ये क्या किया? इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
3: तो अच्छी बात है, इसे गला कर तुम्हारी पहले जैसी बना दूंगा, कल ले जाना।
0: हाँ हाँ समझे, लो पकड़ो अपने पैसे, बड़ा आया ठग कहीं का।
3: अरे बहू, तो पहर होने को आई, अरे कुछ खाने को मिलेगा या आज उपवास ही रख लूं? अब आधा दिन तो हो ही गया है, अरे कहां गए सब? अरे अरे मेरे प्यारे तोते, एक तू ही मेरा है, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता।
7: हर हर महादेव। क्या हाल है बच्चा?
3: घोर कलयुग है, घोर कलयुग है महाराज। आओ बैठो।
7: अच्छा।
3: अरे चुन्नू, ओ चुन्नू, अरे कोई है क्या? देखो साधु बाबा बैठे हैं ड्योढ़ी पर, अरे कुछ खाने को भेज दो, सुबह से शाम हो गई। एक प्याला चाय बस तालाब पर पंडित जी के साथ पी थी, पूरा दिन गुजर गया।
1: ये लो पकड़ो, घर में एक काम है, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, लत्ते धो, औलाद संभालो, सब धंधे पे लो, और इनकी चैचे भी सुनो।
3: ए दाता, ये तूने क्या घृणित जीवन दिया है, वक्त पर अन्न तो जानवर का भी हक है। इतना करता हूं इनके लिए, ये सब क्या मैं

0: अपने साथ लेकर जाऊंगा। लानत है ऐसे भोजन पर, मेरी गैरत मुझे धिक्कार रही है। नहीं करना मुझे भोजन। लो बेटा मिट्टू, मेरे प्यारे तोते, तुम तो हरी हरी मिर्च खाओ। पानी, हाँ लो पानी भी डाल देता हूँ, लो पी लो।
1: महादेव जी, इतनी रात गए यहाँ घर के बाहर बैठे हैं, ठंड बहुत है, अंदर चले जाओ।
0: अरे घर की कलेशों से तो मैं और मेरा मिट्ठू बाहर ही भले। सतगुरु दत्त।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए भूल भुलैया 3 फिल्म से पिटबुल दिलजीत दोसांझ, नीरज श्रीधर की आवाज़ में ये गीत, लिखा है ध्रुव योगी समीर पिटबुल और संगीत में पिरोया है इसे तनिष्क बागची और प्रीतम ने।
1: Let's set the world on fire. Hey, hey, now.

सत्यमेव जयते टू फिल्म से अगला गीत सुनिए, ज़ारा एस खान देवनेगी की आवाज़ है, तनिष्क बागची और रश्मि विराग ने लिखे हैं बोल, और संगीत है तनिष्क बागची का।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ें हैं। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब समय है जनहित में जारी सूचना का। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से

रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगफनी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपर्क अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 मई को वृत्त ग्वालियर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी

0: माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो बिमलेश जी आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए,
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, खड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ।

0: मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: हवा चलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
4: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
4: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
4: अम्मा, दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
4: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
4: नहीं समझी?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो आइसक्रीम।
2: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग

0: खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना। अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
0: लो।
2: गर्मी अम्मा
0: हाँ?
2: आप बहुत अच्छी हैं।
0: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना?
3: हाँ।
2: अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।

0: जरा उधर देखो।
1: अब किधर?
0: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
0: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
1: हाँ।
0: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ।
0: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
1: हाँ, आने दो आने दो।
2: ए, कौन हो तुम? रुको रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
3: कौन हो तुम?
4: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
5: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर हम एक चरवाया हैं।
5: आगे बताओ।
4: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
5: क्या देखा तुमने?
4: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
5: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
5: कितने लोग रहे होंगे?
4: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
5: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
6: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
7: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
6: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
7: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
6: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
7: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
6: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित

0: और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से। हाँ
2: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
5: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
5: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
5: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
5: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
5: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
5: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
5: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे, बहुत धीरे,
3: धीरे।
5: तबे बहुत। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे। जी सर।
5: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
3: हाँ सर।
5: एवरीबॉडी रेडी?
3: यस सर।
5: यस सर। अब हथगोला फेंको।
2: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय

0: सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
1: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
0: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
1: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का. सुनिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से ये गीत गाया है नेहा कक्कड़ ने. शब्बीर अहमद के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है तनिष्क बागची का.

अगला गीत सुनिए अ जेंटलमैन फिल्म से बैनी दयाल और शिरली सेठिया की आवाज़ है, वायु ने लिखे हैं बोल और संगीत है सचिन जिगर का।

अगली फिल्म है रूही, जिसका गीत गाया है शामूर और रश्मीत कौर ने। आईपी सिंह और सचिन जिगर ने लिखे हैं इसके बोल, और संगीत भी दिया है सचिन जिगर ने।

और अब सुनिए योहानी जुबीन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की आवाज़ में ये गीत है फिल्म थैंक गॉड से, जिसे लिखा है रश्मि विराग, दुल्हन ARX और मेलोडी ने, और संगीत में पिरोया है तनिष्क बागची और चामत संगीत ने।

और अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ फिल्म भेड़िया से। ये गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

शेरशाह फिल्म से अगला गीत सुनिए, जुबिन नौटियाल और आसीस कौर की आवाज़ है और इसके गीतकार व संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

और अब सुनिए बर्फी फिल्म से ये गीत गाया है श्रेया घोषाल, निखिल पॉल जॉर्ज ने और स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं इसके बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानी

0: दुनिया हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
4: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

0: समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा और शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन प्रस्तुत होगा, जिसके लेखक वसीम खान और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल हैं। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित गिरिराज के सितार वादन का आनंद लीजिएगा। राग होगा रागेश्री। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 14 मई की सभा में। सबसे पहले सुबह 11 बजे तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन प्रस्तुत होगा और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक आसमां और भी हैं सुनिएगा। कल सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12 बजे 2:30 और कल रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की पहली कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1 बजे महिला सभा, 2:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी जबलपुर के योगदान में सुनेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:15 और रात

9:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। कल रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित विदुर मलिक की आवाज़ में ध्रुपद गायन का आनंद लीजिएगा। राग होगा केदार। इसी के साथ कल और आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉक्टर यादव ने सभी मंत्रियों अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: कैद से मिलेंगे। नार्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नार्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स है उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट डिजीलॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉक्टर यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
3: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिब्वेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जाँच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4,000 OBC युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे OBC छात्रों को 10,000 रुपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov

0: www.ipl.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और एनएचआई अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 1.25 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवे वाय हमारे सभी भैया बहनन को अमृता बहन की राम राम। भैया बहनों स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसे कि अपन देख रहे हैं गर्मी तो पड़ रही है, मनो अबे भद्रा छाए हैं, जी से का होते कि उमस बढ़ रही है और ऐसे में हमें अकबकाई सी छूटन लगत है और जी से हमें शरीर में पानी की कमी हो जाते हैं और बेचैनी को अनुभव होते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें खुद को और अपने परिवार को। और संगे संगे अबे हम जो भी देख रहे हैं कि खरीफ की फसलों की बुवाइयाँ होवे वाई हैं, जिसे पहले के काम हमारे कृषक भैया बहन कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जिन भैया बहनन के खेत खाली हो गए हैं, वे खेतों में ट्रैक्टर चला के उथल पुथल मिट्टी कर लें, जिसे कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और जो उनके अंदर कीटाणु हैं उन्हें धूप लगे और जो कीट ऐसे हैं जो हमारी फसल को प्रभावित कर रहे थे उन पे भी ई धूप से कछु प्रभाव हुए। और आज आप लोगों के संगे ग्राम सभा में जुड़ गए हैं, चर्चाएं हुई हैं, ज़रूरी बातें। तो चलो कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं लोकगीत के संगे। जी ये गाँव है विनोद पुरोहित ने।

0: बहनों लोकेतन के संगे अब आगे बढ़े। बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की, सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार,
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लाने 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाओ है, जी में सूर्यमुखी बीज पे सबसे अधिक 622 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भई है। धान 2461 रुपया, अरहर दाल 8450 रुपया और बाजरा 2900 रुपया प्रति क्विंटल तय करो गाओ है। कृषकों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपया को भुगतान करो जे है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपया की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपया की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लाने संवर्धन योजना भी मंजूर करी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया तो कि जा योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिलों को साइज कम कर दो है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करवे के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटावे की उनकी अपील पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिला में गाड़ी की संख्या 13 से घटा के 8 कर दी है। डॉक्टर यादव ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करवे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिला के मुंगवानी से लाडली बहन योजना की 36वीं किस्त दी है। डॉक्टर यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपया से अधिक की राशि अंतरित करी। जून 2023 में शुरू भई जा योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपया से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा करी जा चुकी है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को परिणाम जारी कर दो है। देश में 85.20% विद्यार्थी पास भए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन को प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहो है और इतने केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण भए हैं। तिरुवनंतपुरम रीजन में 95.62% के संगे देश में सबसे आगे रहो है। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट डिजी लॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपनों परिणाम देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कही थी कि मध्य प्रदेश के बच्चों को सर्वांगीण विकास ही राज्य के सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगी। मंत्री

0: सुश्री भूरिया बुधवार को होटल कोर्टयार्ड मैरियट में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चाइल्ड बजटिंग इन मध्य प्रदेश विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लाने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे गए हैं। ये पुरस्कार शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा उनके अधीन कार्यरत निगम, मंडल, बोर्ड एवं संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारियों को उनके नवाचार आधारित उल्लेखनीय कार्य के लाने प्रदान करे गए हैं। पुरस्कार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में करे गए उत्कृष्ट कार्यों के लाने प्रदान करे गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपर्क अभियान 2026 को आयोजन करो गए है। ई के तहत 14 मई को संचार संध्या वृत्त ग्वालियर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करे गए हैं। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौका पे ही निराकरण करो जे है। अभियान को मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को त्वरित समाधान करवो और उन्हें बिजली संबंधित विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देवो है। पन्ना जिला में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत जिला के वरिष्ठ नागरिक आज 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी के जरिए चयनित होने वाले जिला के तीर्थयात्री 27 मई को खजुराहो रेलवे स्टेशन से गंतव्य के लाने रवाना हुई है, जबकि तीर्थयात्रा उपरांत 2 जून को वापसी हुई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के संगे भोपाल और नर्मदापुरा संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। बुंदेली समाचार समाप्त है।
1: बुंदेली समाचार।
0: तो भैया बहनों, अभी सुने अपन ने बुंदेली समाचार और आगे बढ़त है, सुनत है लोकगीत। ये गांव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

0: भैया बहनों, लोकगीत के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है। और जैसे कि हमने आप लोगों से बात करी थी कि अभी गर्मी के दिनों में आप मिट्टी की यदि उथल पुथल करते हैं तो जो हमें मृदा के लिए अत्यंत लाभदायी है, और हमें यदि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने हैं तो हम तो जो ही कहेंगे कि जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशकों को अपनाएं। आप चाहें तो नई फसल जो आप बोना चाह रहे हैं वे जैविक खेती के तरीके से उगाएं। आज जैविक खेती को महत्व भी बढ़ गया है। हम देख रहे हैं बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य की देखभाल करवे के लाने जैविक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि के भविष्य हेतु अत्यंत लाभदायी है। देखो, जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हमें जो भी उत्पादन मिलते हैं वो शुद्ध और स्वास्थ्य हेतु बहुत अच्छो रहते हैं। और हम तो जो ही कहेंगे कि जैविक खेती आज नहीं, जहाँ हमें आज की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमें भविष्य की ज़रूरत है, तो ये हमें अपनाने हैं। क्योंकि यदि मृदा की उर्वरकता आपको लंबे समय तक रखने हैं तो जैविक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो चर्चा तो अपनी चलत रहे है। मनो आप लोगों को बता दें कि आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता लेके आए हैं, और हमारी भेंटवार्ता को विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। ये विषय में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी, और उनसे भेंट कर रहे हैं महेश भैया। सुनते हैं जब भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर आराधना कुमारी, जो कि सहायक प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय गंजवासोदा मध्य प्रदेश में आप पदस्थ हैं। डॉक्टर आराधना कुमारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है?
2: ये जो मृदा ताप होता है और खरपतवार नियंत्रण, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। और ये मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्रभावी तकनीक होती है उसका कृषि में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। ये जो मृदा तापमान होता है और ये खरपतवार, दोनों ही फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रभाव ऐसा डालते हैं कि

0: ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं उल्टी दिशा में, यानी कि उसकी कमी कम कर सकते हैं पैदावार को, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये मृदा का उचित तापमान सुनिश्चित करता है कि उसमें बीज की अंकुरण कैसी होगी, जड़ों की वृद्धि कैसी होगी, पोषक तत्व जो हम लोग डालते हैं खाद के द्वारा या उर्वरक के द्वारा उसकी उपलब्धता कैसे होगी, तो इन सब चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो खरपतवार जो होते हैं वो पौधों के लिए जो पोषक तत्व जल और प्रकाश जो उनको मिलता है उसको जो मुख्य फसल होते हैं उससे छीन लेते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही प्रभावित होती है। इसलिए किसानों और कृषि प्रबंधकों उनको यह अत्यंत आवश्यक है कि वो ध्यान रखें कि मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक, इन तकनीकों में तो मल्चिंग, उन्नत सिंचाई प्रणालियां जो कि आजकल बहुत उन्नत प्रणालियां उपलब्ध हैं, रासायनिक और जैविक खरपतवार नियंत्रकों का उपयोग और फसल चक्रीकरण शामिल है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मल्चिंग का जिक्र किया है, ये बहुत ही बढ़िया तकनीक है, कई किसान भाई इसको अपनाते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई के तरीके हैं या सिंचाई की प्रणालियां हैं वो भी मृदा ताप को नियंत्रण रखने में सहायक हो सकती हैं क्या?
0: जी हाँ, सिंचाई चूंकि पानी है और हम जानते हैं कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम पानी जब भी नहाते हैं कुछ करते हैं तो हमारा शरीर का तापमान कम होता है, या फिर हमें प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर का तापमान कम होता है। उसी तरीके से पौधों के लिए भी होता है कि जब हम उन्हें सिंचाई देते हैं तो उन्हें पानी मिलता है, तो उन्हें ज़्यादा तापमान कम करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। तो इसलिए मिट्टी में कितनी पानी है और हम कौन सी सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है पौधों की अच्छे वृद्धि और पैदावार के लिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, शेड नेटिंग जो की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ, ये शेड नेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रभावी तकनीक है जो कि तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती हैं, जैसे कि हमने बात करी मल्चिंग की, सिंचाई प्रणाली की, शेड नेटिंग की, गहरी जुताई भी उसमें शामिल है, फसल चक्रीकरण, ये

0: होता है?
1: हाँ, ये शेड नेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रभावी तकनीक है जो कि तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती हैं, जैसे कि हमने बात करी मल्चिंग की, सिंचाई प्रणाली की, शेड नेटिंग की, गहरी जुताई भी उसमें शामिल है, फसल चक्रीकरण, ये सब शामिल है। जो मल्चिंग होता है ये मिट्टी की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो धूप से सीधे मिट्टी को बचाती है और मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, जिससे जो तापमान रहता है मिट्टी का वो नियंत्रित रहता है। मल्चिंग होते हैं ये जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जैविक में जैसे कि जो पुआल होता है, स्ट्रॉ, पत्तियाँ होती हैं पौधों की जो झड़ती हैं, लकड़ी के जो चिप्स होते हैं, ये सब शामिल है। और अजैविक मल्च की बात करें तो प्लास्टिक सीड्स है जो कि हम आजकल खेतों में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम सिंचाई प्रणाली की बात करें तो उसमें आजकल बहुत सारे अच्छे सिंचाई प्रणाली है जो पानी की गुणवत्ता को भी नियंत्रित करते हैं और कम पानी में ही हम ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। ये प्रणालियाँ मिट्टी को उचित मात्रा में नम रखकर और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोककर मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करती हैं। तो ये जो ड्रिप सिंचाई होता है ये मिट्टी की सतह के करीब पानी को पहुंचाता है, जिससे वाष्पीकरण के माध्यम से शीतलन का प्रभाव होता है और इसमें हम कम मात्रा में ही ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने अच्छा प्रश्न किया था शेड नेटिंग, तो शेड नेट फसलों को सीधी धूप से बचाते हैं जिससे मिट्टी की सतह का तापमान कम हो जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका उपयोग हम नर्सरी के पौधे, जो हमारे सीडलिंग होते हैं, जो छोटे छोटे युवा पौधे हैं, या वैसे पौधे जो जिनको छाया पसंद है, जैसे कि हम बात करें अदरक है, हल्दी है, या फिर चाय के बगान, तो छाया पसंद वाले जो फसल होते हैं उनके लिए आदर्श होता है।
0: डॉक्टर आराधना जी, आपने ये जो 3-4 जो है कारक बताए हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो फसल चक्रीकरण जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: हाँ, फसल चक्रीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती से मिट्टी में जैविक पदार्थों का योगदान बदलता रहता है, जिससे मिट्टी के तापमान पर अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे लाभ यह है कि मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है, जिससे तापमान नियंत्रण में मदद मिलती है। अगर हम खेत में एक ही फसल लगाते हैं तो उसकी जड़ एक पर्टिकुलर गहराई तक जाती है, तो वो होता है कि मिट्टी के तापमान को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं तो किसी की जड़ गहराई तक जाती है, किसी की छिछली रहती है, तो वो मिट्टी के तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो गहरी जुताई होती है ये मिट्टी की गहरी परतों में हलचल उत्पन्न कर देती है, जिससे गर्मी का समान वितरण हो जाता है। ऐसे हम देखें कि जो सतही भाग रहता है उसमें ज़्यादा गर्मी रहती है, नीचे के भाग में कम गर्मी रहती है, लेकिन जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो वो समान वितरण हो जाता है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित आराम से किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के कॉम्पैक्शन को कम करना और जड़ों के लिए गहराई तक पहुंचकर सुधार करना भी होता है।
0: तो ये तो आपने बताया मृदा ताप को नियंत्रण करने के कुछ कारक हैं और किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, तो आप बताएं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक कौन कौन सी हैं?
1: खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीकें किसानों के लिए, किसान भाई जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो खरपतवार होते हैं ये फसलों के विकास के लिए जो जरूरी पोषक तत्व, जल और प्रकाश, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा, उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारे जो मुख्य फसल रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए कंपटीशन का माहौल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता में कमी आती है। मैनुअल वीडिंग यानी कि हम अपने हाथ के द्वारा या जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि खुरपी और पावड़ा और उसके अलावा साइकिल वीडर आजकल आ गया है, उन सब के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे खरपतवार हमारे खेत में होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो ये साधारण, बहुत ही साधारण उपकरणों के द्वारा उनको उखाड़ के फेंका जा सकता है। अगर हम बात करें तो ये छोटे खेतों और बगीचों के लिए तो बहुत ही प्रभावी है और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन अगर हमारा खेत थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा एरिया में हम करना चाहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। इसका लाभ ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि इसके मिट्टी को हानि भी कम पहुँचती है और खरपतवार को हम छोटे एरिया में, छोटे जगह में पूरी तरीके से सफाई इसकी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर आराधना जी, आपने मल्चिंग का बताया, तो मल्चिंग से ये तो सुना है कि नमी को संरक्षित किया जाता है,
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन खरपतवार कैसे इससे रुक जाते हैं?
1: जब हम मल्चिंग करते हैं तो जैसा हमने कहा कि पुआल, स्ट्रॉ, पत्तियां जो हैं वो सब डाल देते हैं, या प्लास्टिक मल्च जो होते हैं उन सबको डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको फैला देते हैं तो जो खरपतवार की बीज जो होते हैं वो, उनका अंकुरण कम हो जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, पानी भी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, तो उनके अंकुरण को, बीजों को रोक देता है।

0: उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि इसमें पत्ते, घास या प्लास्टिक ये सब हो सकते हैं, तो ये मिट्टी की नमी बनाने, जैसा आपने भी कहा कि उसके अलावा ये खरपतवारों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये भी है कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि ये सूर्य की रोशनी को खुद ही सोख लेते हैं, तो जिससे जो हमारी सतही तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये अंकुरित बीज जो कि ऑलरेडी अंकुरित कर चुके हैं, क्योंकि हमने बात पहले करी कि अंकुरण को रोकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी अंकुरित हो चुके हैं वो भी कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो खरपतवार नाशी है या फिर हर्बिसाइड्स है, इनका भी हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब हमारा क्षेत्र जो होता है खेती का वो बहुत बड़ा होता है, तो फिर ना ही वो हाथ से मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है मैनुअल वीडिंग से, ना ही मल्चिंग से, तब खरपतवार नाशी का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि वो जैविक प्रकृति के भी हो सकते हैं या रासायनिक भी हो सकते हैं। तो ये जो रासायनिक खरपतवार नाशक जो होते हैं उनका उपयोग करके खरपतवारों को हम बड़े एरिया में आसानी से सफाया उनका कर सकते हैं। इसमें कुछ चयनित होते हैं जो कि विशेष प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको ही मारते हैं, और कुछ गैर चयनित होते हैं जो कि सभी प्रकार के खरपतवार जो हमारे खेत में होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इसका लाभ ये है कि ये तेजी से और व्यापक रूप से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी मिट्टी पानी सब प्रदूषित हो रहे हैं। अगर हम इसको ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करें तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से प्रदूषण बहुत बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि ये खरपतवार जो होते हैं वो प्रतिरोधकता उसमें उत्पन्न हो जाती है। एक बार अगर आप जिस हर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं बार बार आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि 4-5 सालों बाद अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो खरपतवार उससे नहीं मरते हैं, प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ी सी सावधानी इस मामले में हमें बरतने की जरूरत होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: तो ये हर्बिसाइड्स का उपयोग करने में हमें सावधानी जरूर बरतना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था जैविक नियंत्रण का, तो यदि खरपतवारों पर नियंत्रण करना है जैविक रूप से तो वो तरीके कौन कौन से होंगे?
0: हमारे प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे कीट, बैक्टीरिया, कवक ये सब दिए हैं जो खरपतवार खेतों में होते हैं मुख्य फसल के साथ, उनको अपने आप मारने में सक्षम होते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो उन कुछ चयनित कीटों, बैक्टीरिया, कवकों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो खरपतवार है उसको मार सकते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, इससे पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी और पानी का प्रदूषण भी नहीं होता है। केमिकल्स का जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल आहार श्रृंखला में आ गया, कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उसको भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और ये दीर्घकालिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। इसके अलावा थोड़ा जैसे हमने फसल चक्रीकरण की भी बात की थी मृदा ताप नियंत्रण में, वो यहाँ भी बहुत ही प्रभावी होता है। तो वो जो फसल चक्रीकरण होते हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलें हम इसमें उगाते हैं, और वो खरपतवारों के लिए उनके सबके साथ अनुकूलन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक फसल के साथ तो वो अनुकूलित हो सकते हैं, हर फसल के साथ नहीं अनुकूलित हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनका कंट्रोल हो जाता है, इससे खरपतवारों के विकास को प्राकृतिक रूप से हम रोक सकते हैं। और इसका यह लाभ है कि ये मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और खरपतवारों के विकास को भी कम कर देते हैं।
1: डॉक्टर आराधना जी, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, और जाहिर सी बात है कि इन बातों को हमारे किसान भाई जो है अपने खेतों में ज़रूर प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है मृदा का ताप और खरपतवार पे वो नियंत्रण प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आप नहीं बता पाई हैं, तो चलते चलते आप ज़रूर वो बातें बताएं ताकि हमारे किसान भाई जो हैं ध्यान रखेंगे उनका।
0: हाँ, ये मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीकों जिसकी हमने बात करी, उन प्रभावी तकनीकों का समावेश किसी भी कृषि प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी के तापमान का संतुलन और खरपतवारों पर नियंत्रण स्थापित करने से फसलों की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है, जिससे कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है। ये जो तकनीकों की बात करी हमने, जैसे कि मल्चिंग, सही सिंचाई पद्धतियों का उपयोग, जैविक और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण और फसल चक्रीकरण, इन सबको अपना के हम खरपतवारों का प्रबंधन भी कर सकते हैं, मिट्टी के भी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, मृदा के ताप को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई और कृषि प्रबंधक नवीनतम तकनीक और पद्धतियों को अपनाएं और उन्हें समझें, जिससे वे अपने खेती के अभ्यासों को और अधिक सुधार सकें। तो इस प्रकार से प्रभावी मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण रणनीतियों का उपयोग करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद होती है, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है बल्कि यह स्थायी कृषि की ओर एक अच्छा कदम होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इन तकनीकों को समझा जाए और इसको लागू करें अपने खेत में और सही तरीके से उपयोग।
1: डॉक्टर आराधना कुमारी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है, मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी तकनीक, इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी, आप यहाँ बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, अभी सुनिए अपन ने भेंट वार्ता, विषय है तो मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण।

की प्रभावी तकनीक जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी और उनसे भेंट कर रहे हैं महेश भैया। सो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं लोकगीत जिए गाओ है विजय लता पाराशर ने।

तो भैया बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ो। आज आप लोग उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा 2026 में लॉन्च करोगो एक अत्यंत आधुनिक एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म है, भारत विस्तार, जो खास तौर पे कृषकों के लाने बनाओ गाओ है। अब बात करेंगे विस्तार को मतलब क्या है। विस्तार को मतलब है, इको पूरा नाम कह दें तो वो है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। मतलब कि एक तरह की जो बहुभाषी सिस्टम है, जी में आप कोई भी भाषा में अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ले सकते हैं। और यदि सरल शब्दों में कहें तो जो एक डिजिटल कृषि सलाहकार है। अब बात करें कि जो काम कैसे करते हैं, तो आप लोगों को बता दें, कोई भी कृषक भैया बहन ये मोबाइल या फोन कॉल से उपयोग कर सकते हैं। एक एआई वॉइस असिस्टेंट इमें जवाब देते हैं और आपके कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि यह सबसे ज़्यादा फायदा जो हमारे कृषक भैया बहनों को हो रहा है, खास करके मौसम की सही जानकारी मिलत है, संगे संगे फसलों के हेतु उचित सलाह दी जात है, कीट व रोगों के नियंत्रण हेतु सटीक जानकारी दी जात है, संगे संगे मंडी के का भाव चल रहे हैं और आपकी फसलों के लाने का भाव मिलेंगे वो आप लोगों को जानकारी मिलत है, आपकी मृदा को स्वास्थ्य कैसो है या आपको आवे वाई समय में कौन सी फसल बोने हैं, इस विषय में भी जानकारी दी जात है। और इसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमारे कृषकन के लाने लाभकारी हैं और उनको आपको लाभ लेने चाहिए, ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी आप ई भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।

दिक्कत है। और आप इसके अधिक जानकारी के लिए नहीं कि आप वेबसाइट पे जाएं और जानकारी लें और इसको लाभ ज़रूर उठाएं। तो भैया बहनों देखो, चर्चा अपनी चल रही है, बातें अपन कर रहे हैं और अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। सुनत है लोकगीत, जी गाँव है घासीराम पटेल और उनके साथी अन्य।

तो भैया बहनों, अब कार्यक्रम में चूंकि बातें हमें बहुत करने हैं, मनो समय की कछु मर्यादा है और चलवे की बिरिया हो गई, तो आप लोगों को बता दें कि कल ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी बहनें सुनेंगी भेंट वार्ता। विषय रहे महिलाओं में थायराइड की समस्या और निदान। जानकारी देंगी डॉक्टर तृप्ति सक्सेना। तो भैया बहनों, अब आप सबसे विदा लें और ये चलती बिरिया, आप सबसे विदा लेवे से पहले जो ही कहेंगे कि गर्मी की ऋतु है, लू चल रही है, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। तरल पदार्थों को अधिक सेवन करें, मसालेदार तेल तीखे पदार्थों को कम सेवन करें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार की और स्वयं की देखभाल करें। काहे कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो खान पान में सतर्कता बरतें, स्वस्थ रहें। और अब चलती विधि, आप सब को अमृता बहन की राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बड़ी खुशी हुई।
2: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
3: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है। 2009 से ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जनरली देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
2: जी शुभमय, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
4: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
2: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर वर्षा पर कितना ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सिसमम के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और 500 रुपये प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
3: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है, तो वहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं, साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है, कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है, कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं। लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा।
1: जी
0: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे, उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का तो ऑफकोर्स है, क्योंकि धान, पैडी, भारत के
1: जी
0: वेस्टर्न
1: जी
0: जगह पे पैडी का
1: बाजरा है
0: कल्टीवेशन
1: जी
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल का जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स हैं, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है।
1: जी
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टि आकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है, कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया। ये तुलना अगर करें
1: जी
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं
1: जी
0: उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो हैं, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र में कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इनसे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ। मैं और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभ में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, प्रोजेक्ट की प्रॉपरली डिफाइंड

0: माइलस्टोन होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभमय, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में? जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
2: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मोर वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल की बात कर रही है, हम इम्पोर्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये
1: जी
2: कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीनों पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन, वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास जो कि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को, जैसे कहते हैं, सेल्फ सफिशियंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। और सेल्फ सफिशियंसी एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक, जैसे कहते हैं, एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी।
2: तो इसमें ये जो 37,000 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक एक सपोर्ट देंगे, तो इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस कुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी। शुभमय, और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज। गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
2: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
1: जी
2: ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
1: जी जी
2: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि
1: जी
2: बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक, जिसे कहते हैं, मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में ही बहुत जल्दी पता चल जाएगा,
1: जी
2: क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत था, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभमय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का, और सुनिए आमिर जमाल की आवाज़ में ये गीत मर्डर फिल्म से, जिसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

और अब अगली आवाज सुनिए किशोर कुमार की सफर फिल्म से। ये गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब अगली आवाज़ सुनिए किशोर कुमार की प्रेम पुजारी फिल्म से। ये गीत लिखा है नीरज ने और इसमें संगीत दिया है SD बर्मन ने।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, शराबी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ है, अनजान के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब समय है सूचना का। जनहित में जारी सूचना ध्यान से सुनिए। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सूचना अब समाप्त हुई।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
7: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया।

0: देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने

0: की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री

0: हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापे मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests

0: having approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Now, this is very significant, Shobha, if we look at the current situation through which we are going through, especially when we talk about the West Asian crisis and also the energy crisis the world is facing all over. So this decision of the gasification thing makes it all the more important for the current times. How do you see it? And before you answer that, let's listen into the minister what he had to say about it.
1: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम
2: अब खबरें तफसील से. इख्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी. उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी. जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपये फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये फी क्विंटल की तजवीज है.
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
2: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के खराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है. सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है.
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी. 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे.
2: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी. उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है. मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीमकारी की मंजूरी दी है. काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है. इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा. GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी. मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा. वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा. उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन

0: Çaka bir şey.
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा

0: में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था हैं जो भारत

0: उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया किस हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग

थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको

0: सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है।

0: सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देर इज लोकल डिमांड, देर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देर आर नॉट मेनी प्लेसेज इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज टू मेक दैट हैपन। वी सेट आवरसेल्व्स ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाई 2030, सपोर्टेड बाई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल आउटले।
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो

0: ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है. ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए. और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें. तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी. तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ.
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर.
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है. लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है. लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ भाग से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में. एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं. तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में

0: बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, जिसके लेखक हैं वसीम खान और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल हैं।
1: प्रस्तुत है वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: लीजिए पंडित जी, आ गई आपकी मंजिल। थोड़ी बहुत दुआ हमारे लिए भी कर लेना साहब।
1: आशीर्वाद है, सुखी रहो। पैसे कितने हुए?
0: बस 140 रुपया।
1: अरे क्या पागल हो गया है, इतनी सी दूर के 140 रुपए?
0: पेट्रोल नहीं देख रहा है, कहाँ जा रही है?
1: अरे पंडित आदमी को पेट्रोल से क्या मतलब, ले पकड़।
0: ये क्या है?
1: 50 का नोट है और क्या है?
0: अरे 50 रुपए के तो 2 दर्जन केले आते हैं।
1: केले तो?
0: आप जहाँ से चले हो ना मियाँ, वहाँ से यहाँ तक ढाली ढाले
1: तो
0: 2 दर्जन केले ले लेते, खाकर सेहत बनाते, छिलके आगे डालकर फ्री में ही यहाँ तक पहुँच जाते।
1: क्या कह रहा है
2: पंडित जी? पंडित जी नमस्कार, क्या हुआ भाई?
1: अरे साटो वाले को देखो, ईदगाह हिल से न्यू मार्केट के 140 रुपये मांग रहा है।
2: चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पंडित जी, ये लो भाई। खुश?
0: अरे काय के खुश साहब, सारी कमाई तो पेट्रोल पी रिया है।
1: चल चल आगे बढ़, एक श्राप में उल्टी दस्त करने लगेगा।
0: हाँ हाँ, इस गर्मी

0: आइए आइए, यहाँ यहाँ यहाँ बैठिए
1: जी जी,
0: बैठिए पंडित जी। मैं तो समझ रहा था कि आप 4 बजे आएंगे, आप तो 3 बजे ही पधार गए।
2: अरे भाई, 4 बजे हाथ देखने का मुहूर्त थोड़ा जम नहीं रहा था, मैंने सोचा पहले ही चलता हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।
2: चलिए अब जल्दी से बिटिया को बुलवाइए।
0: जी जी जी, बेटा ज्योति ज्योति। पंडित जी, मेरी बिटिया की शादी की बड़ी अटकलें लग रही हैं, जरा कुंडली और हाथ देखकर अच्छी तरह बताइए ये चक्कर क्या है।
3: अरे नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार नमस्कार बेटिया, ये बेटी है आपकी।
0: क्या बात कर रहे पंडित जी, ये बेटी नहीं मेरी पत्नी है माया।
2: अरे सॉरी सॉरी, मेंटेन ही आपने इस तरह किया है, कोई भी धोखा खा सकता है।
0: अरे हम क्या बूढ़े लगते हैं आपको?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भी स्मार्ट आदमी हैं, लेकिन बिटिया अभी तक नहीं आई।
3: लो आ गई हमारी बिटिया।
0: बेटा ये पंडित दीनदयाल तिवारी जी हैं, बड़ा नाम है। भविष्यवाणी तो ऐसी करते हैं जैसे सारा भविष्य आंखों के सामने नजर आ रहा हो।
4: मुझे अपना भविष्य पता है पापा, और सब कुछ साफ साफ नजर भी आ रहा है।
3: चुप हो जा, जबान चलाने को कह दो, जा पंडित जी के लिए शरबत बना के ला।
4: अभी लाती हूँ।
2: प्रताप जी, अभी बच्ची है वो।
0: पंडित जी, बच्ची दिखाई दे रही है आपको?
3: पूरे 23 साल की हो गई है, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे?
2: अरे पहले उसका हाथ तो देख लें, सब ठीक हो जाएगा।
4: लीजिए पंडित जी, शरबत लीजिए।
2: प्रसन्न रहो बिटिया।
4: मैं तो हमेशा ही प्रसन्न रहती हूँ।
3: देखा देखा तुमने?
2: अरे बच्ची है अभी, बच्ची।
4: मैं बच्ची नहीं हूँ पंडित जी।
0: देखो ये तुम्हारा हाथ देखने आए हैं और तुम्हारी शादी के बारे में बताएंगे, ये लीजिए पंडित जी इसकी कुंडली।
2: लाइए बेटा, कुंडली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, साफ साफ शाही ठाट नजर आ रहा है।
4: अच्छा पंडित जी, आपके बच्चे कितने हैं?
2: अरे हम अविवाहित हैं बेटा।
4: तो पहले अपनी शादी कर लीजिए, फिर दूसरों की शादी की भविष्यवाणी कीजिएगा।
3: ये क्या कह रही है ज्योति, पंडित जी का अपमान कर रही हो तुम।
0: अरे इसके सिर पर तो बस इश्क का भूत सवार है।
3: पंडित जी तेरी भलाई के लिए आए हैं पगली, कुंडली में तो सब अच्छा ही अच्छा है, बस हाथ और दिखाना है।
4: नहीं दिखाऊंगी मैं हाथ।
0: क्या कहा तूने?
2: अरे प्रताप जी, अभी बच्ची है ये।
4: पंडित जी मैंने कहा ना आपसे, मैं बच्ची नहीं हूँ।
2: अरे पता है बेटा पता है, लेकिन हमारी नजर में तो बच्ची ही हो ना। हाथ दिखा दे बेटा, हम बता देंगे कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा।
4: अच्छा, 60 साल की उम्र में आपको तो कोई जीवन साथी मिला नहीं, हमारा जीवन साथी कैसा होगा ये आप कैसे बताएंगे?
2: ज्योति बेटा, हम तो शादी करना चाहते थे, कई रिश्ते आए गए, लेकिन कहीं भी रिश्ता निश्चित नहीं हो पा रहा था। वो तो एक दिन पिताजी की नजर हमारे हाथ पर पड़ी।
3: अच्छा फिर पंडित जी?
2: अरे पिताजी ने चीख मार दी, बाकी का परिवार इकट्ठा हो गया।
0: क्यों पंडित जी?
2: अरे मेरे हाथ में शादी की रेखा ही नहीं थी।
3: तो पंडित जी अब क्या होगा?
2: अरे जिस दिन रेखा बन जाएगी विवाह हो जाएगा।
0: लेकिन इस उम्र में अब रेखा बनने का भी क्या फायदा?
2: अरे भाई इसीलिए तो अब दूसरों के विवाह की चिंता रहती है। बिटिया अब तो बता दो हाथ।
4: अच्छा ठीक है, देख लीजिए हमारा हाथ।
0: क्या हुआ पंडित जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
3: इसके हाथ में शादी की रेखा तो है ना पंडित जी?
2: हाँ रेखा तो है।
3: शुक्र है भगवान का।
0: पर आप इतने बेचैन क्यों हैं पंडित जी?
2: वो शादी के बाद,
0: आपने तो कहा था कि बिटिया शादी के बाद ठाट बाट से रहेगी।
2: रहेगी तो घर भी अच्छा मिलेगा, मगर
3: मगर क्या?
2: इसका पति शादी होते ही मर जाएगा।
0: क्या कहा पंडित जी?
2: हाँ
3: क्या पंडित जी?

0: चाय गरम चाय। अरे ये क्या, सुबह सुबह आप लोगों का मुंह कद्दू की तरह क्यों हो रहा है? चाय नाश्ता कीजिए।
1: हमारी एक ही बेटी और उसके साथ भी भगवान का ही अन्याय।
0: ओहो मम्मी, आप भी पापा की तरह घिसी पिटी बातों को मानती हो? भाई हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते।
2: लेकिन बेटा, इतने ज्ञानी पंडित कभी झूठ नहीं बोला करते।
0: तो ठीक है पापा, हमारी शादी करवा दो, बाद में देखेंगे कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है।
3: मतलब तू जीतू के अलावा और किसी से शादी करने को राजी है?
0: जी बिल्कुल, अब हमने फैसला बदल दिया है।
2: पर तुमने तो जिद कर रखी थी शादी करूंगी तो जीतू से, अचानक ये बदलाव?
0: हाँ पापा, क्योंकि हम आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहते।
2: लेकिन बेटा, अब हम तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ आप लोग मुझे अब कभी उदास नहीं दिखने चाहिए, ठीक है? चलिए अब मैं चलती हूँ।
2: देखा तुमने, अचानक इसमें इतना बड़ा बदलाव।
3: दरअसल उससे हमारी उदासी देखी नहीं गई।
2: हम इसकी शादी जीतू से भी कर सकते थे, मगर दारू छोड़ना आसान होता है क्या?
3: अब शादी के बारे में सोचने से क्या फायदा। चलो ऑफिस की तैयारी कर लो।

0: अरे आ गए आप, चाय लाऊं क्या?
1: हाँ ले आओ।
2: हेलो पापा, क्या बात है, आज आप मुझसे भी पहले आ गए?
1: ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था ना, इसलिए।
2: पता है पापा, आज फिर जीतू मिल गया था।
1: शराब पिए हुए होगा?
2: नहीं पापा, शराब नहीं पी थी उसने। पता है, सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था, ज्योति तेरी कसम मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने शराब छोड़ दी है ज्योति।
0: ऐसा वो कई बार कह चुका है। लो चाय लो।
2: वही तो माँ, वही मैंने भी कहा, ऐसा तुम कई बार कह चुके हो जीतू। फिर उसने कहा तुम्हें कब पीता हुआ नजर आया मैं, फिर मैंने कहा अब तुम पियो या ना पियो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं।
1: फिर
2: क्या था पापा, उसने गुस्से में अपनी बाइक दन से दौड़ा दी।
0: तूने अच्छा किया बेटा,

0: अरे क्या सोए नहीं?
1: नींद नहीं आ रही है।
0: क्या सोच रहे हो?
1: सोच रहा हूं अगर सभी लोगों को अपना अपना भविष्य पता चल जाए तो क्या हो?
0: पाप से भय लगेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा।
1: अरे इसका इसका उल्टा भी तो हो सकता है।
0: जो लोग उस निराकार से नहीं डरते उन्हें तो पाप करने में ही आनंद आता है।
1: मेरे मन में भी ज्योति का भविष्य जानने के बाद पाप आ गया है।
0: कैसा पाप?
1: अगर हम ज्योति की शादी जीतू के साथ कर दें तो?
0: जीतू के साथ? ये ठीक नहीं होगा। ज्योति के साथ भी और जीतू के साथ भी?
1: अरे ज्योति के साथ तो सही होगा। पंडित जी ने पहले पति के मरने का कहा है, दूसरे का थोड़ी।
0: कैसी बात करते हो, ये पाप होगा।
1: अगर लड़की का भविष्य देखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जीतू जैसे लड़के का क्या भविष्य? क्या सोच रही हो? बोलो क्या कहती हो?
0: पर वो ज्योति राजी हो जाएगी?
1: क्यों नहीं होगी, प्रेम करती है उससे।
0: लेकिन वो तो मना कर रही थी।
1: झूठ बोलती है, देखती नहीं रोज किसी ना किसी बहाने से उसका नाम लेती रहती है।
0: हाँ वो तो, मगर ज्योति को ऐसा नहीं लगेगा कि पापा ये जानते हैं कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है।

0: अच्छा मम्मी, अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, बाय।
1: अरे ज्योति, जा कहाँ रही हो? ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
2: अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही है।
1: अरे वाह, आज तो हमारी बिटिया बड़ी स्मार्ट लग रही है, है? कहीं रास्ते में जीतू न मिल जाए।
0: उस पागल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी मिल सकता है।
2: वैसे बुरा लड़का नहीं है जीतू, बस शराब की बुरी आदत है। अगर हम तुम्हारी शादी उससे कर भी देते तो क्या तुम एक शराबी के साथ जीवन गुजार सकती थी?
0: पापा, आप ही ने तो एक बार कहा था ना कि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। हो सकता है कि वो शादी के बाद शराब छोड़ भी देता, और बाद में क्या, उसने तो सच में मेरी खातिर शराब छोड़ दी है। पर किसी को यकीन है, किसी को नहीं।
1: अगर तुमको उस पर पूरा विश्वास है तो भाई शादी में क्या बुराई है? क्यों
2: तो देरी क्यों करते हो जी, चलो मिलते हैं उसके घर वालों से।
0: पर पापा, आप तो उन पंडित जी की बात पर विश्वास करते हैं ना, शादी के बाद मैं विधवा हो गई तो?
2: ऐसा नहीं कहते बेटा, इन्होंने पंडित जी से बात कर ली है और इस दुर्घटना का समाधान मिल गया है।
1: हाँ, वो खर्चा थोड़ा ज्यादा है, पर क्या करें, उठा लेंगे हम।
2: वैसे भी बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है।
0: सच माँ, मम्मी, तो ये खुशखबरी मैं जाकर जीतू को सुना दूँ?
1: हाँ हाँ सुना दो।
0: वो मुझे भी रंगमहल पर ही खड़ा मिलेगा।
2: हाँ बेटा बोल दे, और कहना हम लोग कल उसके घर आ रहे हैं।
1: मगर वो दारू पिए हुए नहीं मिलना चाहिए।
0: ओहो पापा, बोला ना, उसने दारू पीना बंद कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा।

0: बेटा। अरे कितना रोएगी, चलना आप।
1: जी तू सही कह रहा है जी, देखो ना कितनी देर हो गई है। समधी जी अब आज्ञा दीजिए।
2: जी समधी जी, आप ही की बच्ची है,
3: दिल का टुकड़ा है हमारे, जरा ध्यान दीजिएगा समधी जी।
0: अरे हम भी अपने दिल में ही रखेंगे ससुर जी, देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है।
1: चलो बेटा चलो, चले जरा, दोस्तों के साथ बैठ गया था, हो जाता है।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, खुशी का माहौल है ना, थोड़ा एंजॉय तो करना ही चाहिए।
3: जाओ बेटा जाओ।
4: माँ।
3: ज्योति बेटा।
0: ओ माय गॉड, कितना रोती है। अरे क्या गोद में उठा के ले जाऊं तुझे?
4: नहीं जी, चलती हूँ।
0: तो चलो

0: मैं तो ये कह रहा था, मालवीय जी है ना अपने?
1: हाँ हाँ।
0: अरे जीतू की कोई खबर आ जाए तो हम उनसे बात करें।
1: वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जाकर पता तो लगाओ हमारी ज्योति है कैसी। उधर से कोई खबर आ नहीं रही और ना ही जीतू से लेकर आ रहा है।
0: तुमने फोन लगाया था?
1: कई बार लगाया, लड़की से कोई बात ही नहीं करने देता। जीतू उठाता है तो कहता है अभी ज्योति हमारे लिए मुर्गा बना रही है, बाद में बात करवाते हैं। गुप्ता जी फोन उठाते हैं तो वो भी पिए हुए नजर आते हैं।
0: अरे अब क्या करें हम लोग?
1: अब अरे हाँ, वो पंडित जी को बुलवाओ ना, उनसे कहो आपने कहा था लड़का शादी होते ही निपट जाएगा। ये कैसी भविष्यवाणी की, आज एक हफ्ता हो गया।
0: लेकिन उन पंडित जी को तो शर्मा जी ने पहुंचाया था, बड़ी तारीफ की थी उनकी।
1: तो उन्हें बुलवाओ, फोन करो शर्मा जी को।
0: हाँ करता हूं, रुको जरा। हेलो शर्मा जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूं। जी काम तो कोई खास नहीं है, वो पंडित दीनदयाल जी को बुलवाना था। नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। जी जी जी जी जी शुक्रिया।
1: क्या बोले?
0: आते हैं थोड़ी देर में। बोले पंडित जी के बारे में कोई भी गंदा विचार मन में मत लाना, पाप लगेगा, वो तो अंतर्यामी हैं।
1: हाँ लगते तो थे, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
0: अरे कभी कभी दुर्घटना भी समय ले लेती है।
1: हो सकता है ज्योति ने कोई उतारा कर लिया हो।
0: लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ज्योति फोन क्यों नहीं कर रही है।
2: मम्मी फोन करने की क्या जरूरत है, हम खुद ही जो आ गए।
1: अरे ज्योति
2: कैसी हो माँ?
1: ठीक हूँ, तुम कैसी हो ज्योति?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बेटा जिस दिन से तुम्हारी विदाई हुई है एक बार भी फोन नहीं किया।
2: मम्मी टाइम ही नहीं मिलता था, और आप तो समझ सकती हो ना कितने काम होते हैं घर में।
3: ससुर जी को मेरा नमस्कार और सासू जी को प्रणाम। ससुर जी बेचारी बहुत काम करती है, कभी बोटिंग, कभी जू, कभी सैर सपाटा।
1: क्या बड़बड़ा रहा है ये,
0: पीए में आदमी ऐसी ही बातें करता है।
1: तू तो कहती थी छोड़ दी इसने।
2: हाँ मम्मी छोड़ दी है।
0: फिर ये क्या है?
2: वो तो मैरिज एंजॉय करने के लिए कभी कभार लीजिए, पंडित जी भी आ गए। प्रणाम पंडित जी।
4: चुप चुप जियो बिटिया, हो गया तुम्हारा विवाह?
3: जी आशीर्वाद है आपका।
4: तुम मदिरा का सेवन करते हो पुत्र?
3: जी कभी कभी गम भुलाने के लिए।
4: तो गम मदिरा से भुला दिया जाता है?
3: नहीं, कभी कभी खुशी में भी पी लिया करता हूँ।
1: कितना ढीठ है, कैसे गुजार रही है तू इसके साथ?
2: बस ऐसे ही माँ।
4: बेटा दारू पीना बहुत ही बुरी बात है।
3: बात ही है ना पंडित जी, बुरा तो नहीं।
4: अरे वो प्रताप जी कहिए किस लिए बुलवाया था आपने?
0: जी वो बात ये है पंडित जी की।
3: क्या बात है ससुर जी, बोलिए बोलिए ना, दामाद है हम आखिर आपके।
1: पंडित जी कुछ नाश्ता वास्ता लेकर आती हूँ आपके लिए।
4: अरे नहीं नहीं रहने दो, तुम तो काम बताओ किस लिए बुलवाया है।
3: अब बोल भी दो ससुर जी, सब घर के ही तो लोग हैं अपने।
4: अरे ये कभी नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ सुनिए। प्रताप जी जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा इन दोनों के साथ कभी कोई घटना नहीं हो सकती, और प्रेम से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है जो इन दोनों में एक दूसरे के प्रति पाई जाती है। अरे प्रेम है तो ईश्वर है, संबंध है, परिवार है, इज्जत है। प्रेम ही था जिसने जीतों की शराब छुड़वा दी।
0: पंडित जी ये क्या कह रहे हैं आप?
4: हाँ इसकी दारू छूटने के बाद इसका बाप कितने बार अपने लड़के के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगने आया, मगर आपने इस पर ना इसके पिता पर कभी विश्वास किया, लेकिन मेरी भविष्यवाणी पर जरूर विश्वास कर लिया।
1: आपको ये सब कैसे मालूम हुआ?
4: अरे हमें ही तो सब पता है। जीतू को जब ये पता चला कि शराब के कारण उसे क्या क्या खोना पड़ रहा है,
5: तो मैंने निश्चय कर लिया मम्मी जी, मेरा परिवार मुझसे दूर होता जा रहा था, अच्छे दोस्त कटने लगे थे, लीवर में शिकायत होने लगी थी, नशे में अपने कोई भी काम को सही अंजाम नहीं दे पा रहा था, भविष्य में मंजिल का कोई पता ही नहीं था,

0: कहाँ जा रहा हूँ, पैसे का नुकसान अलग, सबसे बड़ी बात मुझसे मेरा प्यार छूटा जा रहा था।
1: हाँ पापा, इन्होंने सच में शराब बंद कर दी है। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था वैसा मिल गया। अरे, अब पंडित जी की तरफ क्या देख रहे हैं आप?
2: आ जाइए पंडित जी, आप भी अपने असली रूप में। हाँ बेटे, ये लो, ये रही मेरी दाढ़ी।
3: अरे,
2: और ये रही मेरी मूछें।
3: मूछें?
2: आप संदीप जी? आप थे पंडित जी? आप? हाँ भाई,
1: पंडित जी आप।
2: क्या करते, बच्चों की खातिर हम भी इनकी साजिश का हिस्सा बन गए। आप लोग तो किसी भी हालत में राजी नहीं थे ना?
3: ठीक ही रहा, अंधविश्वास की पट्टी हमारे दिमाग से भी हट गई।
4: भाई साहब, हम शर्मिंदा हैं, हमें क्षमा करें। हमें विश्वास ही नहीं था कि रोज का पीने वाला अचानक इतना बदल जाएगा।
0: मम्मी पापा, अब हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। ऑटो वाला फारूख अहमद, पंडित और गुप्ता की भूमिका निभा रहे थे राकेश जैमिनी, प्रताप संजय मेहता, माया दीप्ति अग्निहोत्री, ज्योति कंचन राजानी और जीतू थे अमित रिछारिया। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे वसीम खान द्वारा लिखित नाटक जीतू बन गया जेंटलमैन, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

पंखा रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यूज़।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में पंडित गिरिराज के सितार वादन का आनंद लीजिए। राग है रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आपने आनंद लिया पंडित गिरिराज के द्वारा सितार वादन का, और राग था रागेश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़

0: का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10:24 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।